record संख्या प्राप्त की है 700.8 MHz पर। आज गुरुवार है 6 सितंबर 1948 देश माह के साथ है। हमारी आज की ये सब

पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर का।

0: टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को हम क्यों मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के बालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस पद से सम्मानित करेंगे। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस पद देश में सिक्किम पुलिस बल को दिए जाने वाला

बाद भक्ति त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का

से नीति सत्यम के अनुसार विद्वान होने पर भी दुष्ट मनुष्य सर्वथा परित्याग करने योग्य होता है, क्योंकि जैसे मणि धारण करने से सांप की भयंकरता कम नहीं होती, वैसे ही विद्या के अलंकृत दुर्जनों की स्वाभाविक दुष्टता का नाश भी सही नहीं होता। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

थोड़ी देर में सुबह 6:35 से चुने गए श्रीराम चरित मानस गान भाग 202 सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से आपको सुनाएंगे संगीत सरिता। इन दिनों आज संध्या श्रृंखला कर्नाटक संगीत पद्धति के राग कलाकार हैं शकुंतला नरसिंहन। आज श्रृंखला की छठी कड़ी आप सुन सकेंगे भूल बिछले गीत। ये कार्यक्रम

restaurant, fabric with features of Canada, handheld and strategy. Objects of underwear station language community, such as the Batman Street Project. She will advocate with teaching of truth, keep the look. She will know what the T-shirt or roughly know what the T-shirt of Canada are to some time. She is at the Kendra Toga Nevisa Mahoub Hunter. आपकी अध्यक्षता से इशारा सेंटर के आज के मेहमान इस सेंटर के आप सुनिएगा डॉक्टर सुनीता दुबे से यूनिक खान की बातचीत प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान सुबह 11 बजे से रात्रि 11 बजे से रंग करने

पिता और लक्ष्मण के लिए उमड़ देखने से आंखों में आंसू उमड़ आए हैं। निर्दोष भाव से वे भरद्वाज जी के सम्मुख अपने उद्गार प्रकट करते हैं। उन्हें अपनी माता कैकेयी की करने का कोई विचार नहीं है और न ही पिता के निधन का शोक है।

और प्रियस समस्त जगत में विदित थे, जिन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र पाए और पुत्र विरह में नाशवान शरीर त्याग किया, ऐसी पुण्यात्मा के लिए शोक करना तो उसकी मर्यादा के प्रति अपमान होगा। भरत को सोच इस बात का है कि राम लक्ष्मण तथा सीता मुनियों का वेश धारण कर वन वन फिर रहे हैं, वल्कल वस्त्र पहनते हैं, कंदमूल का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछा कर सोते हैं और वृक्षों की छाया में सर्दी गर्मी वर्षा और हवा के झोंके सहते हैं। इसी दुख से भरत की छाती फटती है, न भूख लगती है न नींद आती है। इस दुख का निदान उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देता। निदान मात्र एक है, श्री राम को अयोध्या

रही है। शकुंतला नरसिम्हन द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिसकी चर्चा की जा रही है कर्नाटक संगीत पद्धति में स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृष्णों के बारे में। कल आपने सुना था राग धनाश्री, आज प्रस्तुत है राग दरबारी। नमस्कार श्रोताओं, संगीत सरिता में इस श्रृंखला को पेश करते हुए मुझे बहुत ही खुशी होती है।

रही हूँ। स्वाति कुमार महाराजा द्वारा हिंदी में रचित एक और कृति और आज का राग है हिंदुस्तानी पद्धति का बरवारी कांगड़ा। इस पंडित के बोल है, देवन के पति इंद्र, तारा के पति चंद्र, विद्या के पति गणेश, दुख भार हारी। वैसे तो राग और भाषा उत्तर भारतीय है, लेकिन रचनाकार दक्षिण के और बंदिश का विभाजन भी कर्नाटक पद्धति के अनुसार पल्लवी और अनेक चरणों के रूप में किया गया है। इस कृति को आपके सामने रखने से पहले जरा साहित्य के बारे में दो शब्द कह दूं। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते समय जो कहते हैं उसी को दोहराते हुए महाराजा स्वाति कुमार कहते हैं, देवन के पति इंद्र, तारागण में सबसे उत्तम है चांद, मुनिगण में अग्रणी है व्यास ऋषि और वाद्यों में सबसे उत्तम है वीणा, रागों में सबसे सुंदर है दरबारी कांगड़ा, तो ऋतुओं में वसंत ऋतु सबसे सुहावना है, पक्षियों में अति सुंदर हंस पक्षी है, तो मनुष्यों में अवधवासी राम सबसे उत्तम है, पहाड़ों में हिमालय तो तीनों लोक के पति पद्मनाभ अर्थात विष्णु है। महाराजा स्वाति तिरुनाल ने अपने कृतियों में पद्मनाभ इस शब्द को मुद्रा के रूप में जोड़ा है। कभी पद्मनाभ के जगह कमलनाभ, जलजनाभ भी कहते हैं, लेकिन अब तो सबका एक ही हुआ, यानी कि सब विष्णु के अनेक नाम है। तो अब सुनिए राग दरबारी कांगड़ा में स्वाति तिरुनाल महाराजा द्वारा रचित एक हिंदी भाषा की सूचना।

0: की आवाजों में आन फिल्म का गाना गीतकार से शकील बदायूं ने और संगीतकार नौशाद। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की चिरंजी भवन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले जिसे गीत। आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियों फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की

स्पेशल 12 बजे के बीच हरी शहरी कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

गुरु की नहीं, लता मंगेशकर की आवाज में अमर।

ชนว่าดิ้นไม่ได้เลย

Thank you.

0: सुपुत्री नीतु प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद केस सीधा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे।
0: सुमन अंकुली कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम।

that

Instagram की या फिर फेसबुक, हमारे प्यारा का वो क्या आवाज़ है, मैं

पश्चिम भारत में अगले दो दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।

0: को एक स्थिर तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम आकाशवाणी समाचार दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी निर्देश दिए हैं।
1: समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेन देन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हो। बड़े व्यापारिक संस्थानों की जांच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गांधीनगर के कनेर तालुका से अपने कार्यक्रम और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में

समाचार आकाशवाणी से प्रसारित

0: स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,000 सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला कि सरकारों के एजेंसी राज्य में एफसीआई का बड़ा गोदाम होता है, वहाँ के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में डिविजन में एयरपोर्ट स्टॉप तक पहुँचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा एयरपोर्ट स्टॉप है उसमें डीजल का रेमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रिक्ट

being someone raised.

0: podem fazer tudo isso, ou de dar uma meia hora, de dizer que eu já tinha muito tempo de Hariana, Mata Pradesh, Konkan, Goa, Odisha, Punjab, Telangana, ou Uttar Pradesh, mas de lá, de duas semanas de Assangade. Mata Pradesh, meu Mosson de Bhag, meu Charlie, que eu tenho meu Lu, ou Bhisha, Garmiti, que eu tava muito aí.
1: मध्य प्रदेश में इस बार मौसम का मिश्रित तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साफ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में आज भी तेज धूप का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव घोषण
0: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और

thinking, Steve, I'll make the most of the turn. We

को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का पंद्रहवा और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एडिलेड नाइट ने राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान टीम ने वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर टू में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। प्रवासी समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी। धन्यवाद जागृति। एफआईआर पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान के कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक पत्र ने लिखा है एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर,

people.

Saturday morning.

0: में सरकारी बागों, हर तीन महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलीडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है। नौतपा में कप रहा उत्तर भारत, कल से मिली की उम्मीद।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन जिताया। इसके साथ ही समाचार प्रभाग

मूव करो। जो स्वयं छोड़ता है वही दूसरों को दे पाता है। लेकिन आप मदद करने की भावना जैसे खत्म नहीं हो गई हो, व्यक्ति खुद पर आई समस्या के लिए दूसरों की मदद की अपेक्षा करता है, लेकिन वही दूसरों को परेशान देखकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता, जिनके पास जीने के लिए कोई क्यों होता है, कोई वजह होती है, कोई लक्ष्य होता है, वो लगभग किसी भी कैसे वो सहन करते हुए खुद को जीने और दूसरों को जीवन जीने के रास्ते तलाश कर ही लेते हैं।

बुद्धि में ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे, यानी कार्य परिश्रम से सिद्ध होते हैं, केवल मनोरथ से नहीं। हम सोचते तो बहुत हैं कि दूसरों की सहायता करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ सोचने भर से कुछ नहीं होता, उसके लिए काम करना पड़ता है। कार्ल जंग ने कहा था, सबसे तीव्र संघर्ष यदि पार कर लिए जाए तो अपने पीछे ऐसी सुरक्षा और शांति की अनुभूति

आत्मा ये ऊंचाई कमजोरों को ढीले की।

0: की बुरी। नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सती सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सती सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के गीत।
2: बधाई हो
1: जिसमें के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग। हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात। तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

फिर 15 किलोमीटर इसी दिन के बाद पुलिस का जानने के लिए ये सारा सुविधा को देते हुए हम जो मुख्यमंत्री थे उसी समय ये सब हम चला दिया था और इसी गुरु

0: Ratzeba, ma non è
1: Thank you.

के आ जाएगा मैं बॉबी और ऋषि की लव स्टोरी फिल्म का गाना लीजिए के लिए आशा भोसले की आवाज में बेगम जान फिल्म का गाना। संगीतकार हैं कौशल मुनीर और संगीतकार हैं अनु मलिक।

0: खुशियों की रंगोली खुशी की चमक यादों की नमक बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगे अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी।

में चित्रलेखन कराना, गीतकार सोहम मजूमदार और संगीतकार नीमो। वीडियो के लिए भूत बंगला फिल्म का गाना विशाल मिश्रा, अंका शर्मा और अंका मिश्रा की आवाजें हैं, कुमार के बोल और प्रीतम की हत्या।

0: राज्यों में अभी आप सुन रहे थे भैया जी के प्रभु का गाना गीत और संगीतकार थे अंजद नदी। आइए सुनते हैं संदेश।
1: राष्ट्रीय आसमान शाम सितारों से खुल जाता है,

0: से उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद केस सीधा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे
1: सुनना न भूल।

परिवार में एक लड़का रहता था। उस लड़के को फिल्मों का ऐसा शौक था कि बड़ौदा से निकलने वाली किसी ट्रेन में सवार हो जाता और आसपास के गांव या कस्बे में पहुंच जाता, लाइन से एक दो फिल्में देखता और लौटती ट्रेन से चुपचाप वापस आ जाता। किसी को कुछ पता नहीं चलता। घर वाले ये सोचते कि ये लड़का यहाँ वहाँ भटकता रहता है, जाने किसी उनके साथ खेलता।

0: में बैठा मुंबई की तरफ जाने के लिए इरादा ये था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। पिताजी को पता चल गया, पिताजी ने जमकर कुटुंबस्थी और वापस ले आए। आज के फनकार कार्यक्रम में आज रोचक दास्तान महबूब खान।
1: मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने

0: किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार।
1: लघु खान का जन्म 9 सितंबर 1906 को बड़ौदा के पास सरार गांव में हुआ था। बहुत सामान्य सा परिवार था, छोटा मोटा काम था, बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, जिंदगी खुशनुमा थी। जैसा कि हमने आपको बताया, महबूब खान की बचपन की जिंदगी में फिल्में पैदा करती थी और उन ट्रेनों पर सवार होकर वो आस पास जाते, फिल्में देखते और वापस लौट आते। जहन में बस ये चलता रहता कि किसी तरह से वो खुद को पर्दे पर देख पाए, शौक अभिनय करने का था। तो वही ये सिलसिला जारी रहा। पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी थी नहीं, इसलिए फायदे से पढ़ाई लिखाई हो न सकी। और फिर हुआ यूं कि आस पास के शहरों में फिल्में देखना होता था। समय बीता गया। हुआ यूं कि महबूब खान की दोस्ती एक रेलवे गार्ड से हो गई थी और उस रेलवे गार्ड ने उनको पूरी तरह से यकीन दिला दिया कि उनके भीतर फिल्मी पर्दे पर अभिनेता बनने के गुण है और उन्हें भाग जाना चाहिए मुंबई। हुआ यही, 16 वर्ष की उम्र में महबूब खान मुंबई भाग आए और सिनेमा में अपना नसीब आजमाने लगे। कॉन्स्टेबल पिता को पता चल गया, वो सीधे मुंबई आए, अपने बेटे को ढूंढा, उसका कान पकड़ा और उसको वापस बड़ौदा ले गए। वहाँ जबरदस्ती महबूब खान की शादी कर दी गई, ये सोचकर कि वो बस यहाँ बंध जाएंगे और सिनेमा के अपने जुनून को जहन से निकाल कर फेंक देंगे। बहुत जल्दी महबूब खान एक बेटे के पिता भी बन गए, लेकिन जिम्मेदारी नहीं आनी थी तो नहीं आई। और आखिरकार महबूब खान ट्रेन में सवार होकर आप

मैं रूपन उस जमाने के बीटी स्टेशन के पास ड्यूटी स्टूडियो के बाहर खड़े रहते और इस इलाक में रहते कि किसी तरह से स्टूडियो में घुसने का मौका मिल जाए, बाकी का काम वो निपट लेंगे और किसी तरह से अभिनेता तो बन ही जाएंगे। लेकिन ये हो नहीं रहा था। दिन पर दिन बीत रहे थे। महबूब खान रातें प्लेटफॉर्म पर सोते हुए गुजारते। तरह तरह की परेशानियां होती। वो हौसला नहीं हारते। हर सुबह ज्योति स्टूडियो के सामने खड़े हो जाते। एक दिन गार्ड सचमुच इंटरेस्ट हो गया और उससे महबूब खान की मुलाकात करवाई आरवेशियर ईरानी से, जो उन दिनों भारत की पहली बोलती फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ से महबूब खान की गाड़ी चल पड़ी क्योंकि आरवेशियर ईरानी ने उन्हें बतौर एक्स्ट्रा काम दिया। सन 1927 में ये फिल्म थी अली बाबा और 40 चोर। इसके बाद वो क्राउड का हिस्सा बनते रहे, फिर जूनियर आर्टिस्ट बने, फिर सपोर्टिंग रोल्स मिलते रहे और फिर ऐसा मौका आया जब भारत की पहली बोलती फिल्म के हीरो के तौर पर आरवेशियर ईरानी ने महबूब खान को बस चुन ही लिया था। लेकिन फिल्मों में पैसा लगाने वाले और सब के विशेषज्ञ ये मानते थे कि ऐसे लड़के पर दाम नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि बोलती हुई फिल्में बनाना अपने आप में एक बड़ा दाव है। महबूब खान को इस रोल से हटा दिया गया। वहीं उन्हें समझ में आ गया कि अभिनय में वो कुछ ज्यादा तीर नहीं मार पाएंगे, उन्हें जिंदगी में कुछ और करना चाहिए। यहाँ से एक नया जुनून शुरू हुआ अपनी एक स्क्रिप्ट लिखने और उसका निर्देशन करने का। उन्होंने आखिरकार अपनी एक स्क्रिप्ट पूरी की और अलग अलग स्टूडियो के चक्कर फिर से काटने लगे। प्रोड्यूसर्स उनकी कहानी सुनते, उन पर हंसते और उन्हें दरवाजा दिखा देते। आखिरकार सन 1935 में एक प्रोड्यूसर को उनकी कहानी पसंद आई और तब आई महबूब खान की निर्देशित पहली फिल्म अल हिलाल। ये फिल्म सिसिल बी डिमेलो की जंग

बड़ी और महबूब खान की गाड़ी भी चल पड़ी। लगभग यही दौर था जब सिमर लाल देसाई के सागर मूवी टोन में महबूब खान बतौर विलेन काम करते थे और अच्छे खासे पैसे बना रहे थे। इसी दौरान सागर मूवी टोन ने उन्हें निर्देशन का मौका दिया। सन 1936 में महबूब खान ने डेक्कन क्वीन फिल्म बनाई। सन 1939 में आई एक ही रास्ता। सन 1940 में अली बाबा। सागर मूवी टोन के लिए उन्होंने सन 1940 में बनाई अपनी फिल्म और अधूरी

सागर मूवी टोल और नेशनल स्टूडियो की फिल्मों का निर्देशन करते रहे। सन 1940 में आई फिल्म औरत महबूब खान के करियर की एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म बनी जाती है। सन 1942 में महबूब खान ने बनाई फिल्म रोटी और उसके बाद फिल्म नजमा का निर्देशन किया। ये फिल्म साल 1943 में आई थी। इसके बाद उन्होंने तकदीर और हुमायूं जैसी फिल्में बनाई। सन 1946 महबूब खान के निर्देशन में आई फिल्म

खान के करियर की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म आई अजबार। कलाकार थे दिलीप कुमार, राज कपूर और वर्गीस। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर फरीदुल ईरानी थे। 26 अगस्त 1949 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। ये फिल्म एक प्रेम त्रिकोण थी। इसके गाने मजनू सुल्तानपुरी ने लिखे थे और

ट्रैक बतौर स्पॉट बॉय शुरू की हो और निश्चित रहें हो अनमोल ऊंचाइयों को छूने के सपने उस कलाकार ने मुंबई फिल्म उद्योग को दिया हॉलीवुड स्टाइल का पहला फिल्म स्टूडियो महबूब स्टूडियो। महबूब स्टूडियो का आगाज सन 1952 में हुआ। मुंबई के बांद्रा में स्थित इस स्टूडियो में

सत्तावन का अक्टूबर महीना बड़ा मायने रखता है। इसी साल 30 अक्टूबर को यानी 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती अस्तित्व में आई थी और विविध भारती पर प्रसारण शुरू होने के कुल 23 दिन बाद रिलीज हुई थी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया। रिलीज डेट है 25 अक्टूबर 1957। भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक काल्पनिक फिल्म। कलाकार नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार। दिलचस्प बात ये कि ये फिल्म महबूब खान की ही 1940 में आई फिल्म औरत का रीमेक थी। इस फिल्म की पटकथा और संवाद एस अली रजा, वजाहत मिर्जा और महबूब खान ने मिलकर लिखे थे। संगीत नौशाद का था, गीत शकील बदायूं के। मदर इंडिया भारत की एक बेमिसाल फेमिनिस्ट फिल्म। महबूब खान एक स्त्रीवादी फिल्मकार माने जाते हैं, एक ऐसे फिल्मकार जो महिलाओं के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, चाहे उनकी फिल्म आन हो, अमर हो, मदर इंडिया हो या औरत। सशक्त नायिकाओं की भूमिकाओं वाली ये फिल्में सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद की जाएंगी। मदर इंडिया को तो एकेडमी अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट भी किया गया था। ये अलग बात है कि ये फिल्म पुरस्कार जीत नहीं पाई, लेकिन विश्व स्तर पर जितना हंगामा मदर इंडिया ने उस

सिनेमा और सिनेमा की महबूब खान की विरासत महबूब स्टूडियो आज भी महबूब खान को अपने समय से आगे का फिल्मकार माना जाता है। महबूब खान के सम्मान में भारत सरकार ने एक पोस्टल स्टैम्प जारी किया था जो डाक टिकट के

चल हाँ मिले और ना साफ साफ ना। अब वो पल बड़े अजीब होते हैं। हम अक्सर खुद को झूठी तस्वीरों के चेहरे में

हम अपनी जिंदगी को पूरी लेकिन ये जगह हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। ये बेमिसाल नज़्म, आइए सुनते हैं। सुप्रसिद्ध की आवाज़ में

सुन रहे हैं क्योंकि संगीत सिंह ने और इसे लिखा था सुदर्शन पाटिल ने।

0: हमारे हमारे हमारी वेबसाइट aakashwani.gov.in पर। नया भारत, नया
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग।

करता है। त्यौहार नहीं है ये, त्यौहार है कुर्बानी का, समर्पण का। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को

यही तो है हमारे देश की अपनी खूबसूरती, मिलकर खुशियाँ बांटना। लिहाजा इस त्योहार में आप के साथ रहें, उनके साथ गले मिलें और अपने जा रहे हैं तो इस त्योहार को मुकम्मल होना बनता है। और यही दुआ करते हैं आज के त्योहार के दिन के खुदा आपके जीवन को सुख

0: लगवा ले, 16 पैनल लगवा ले। तब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना। जब
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: मैंने प्रधानमंत्री जी

अच्छा या बुरा ईद भी कहते हैं, ये मूलतः वर्षों का त्यौहार है क्योंकि इसकी सभी रस्में रिवायतें घर के बड़े अर्थात जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा ही शुरू की जाती है। दोस्तों हज का फर्ज ढेर सारे नियमों से बंधा होता है, इसलिए कुर्बानी पर भी बंदिशें आयत होती हैं। पहला नियम हज और कुर्बानी पर ये लागू होता है कि पैसा अपनी हलाल की कमाई का। कुर्बानी का आध्यात्मिक पक्ष महत्वपूर्ण है। कुर्बानी

कर पाते, अब कुर्बानी नहीं कर पाते, कोई बात नहीं। अपनी हैसियत से कोई भी मदद करना भी

तो अक्सर हम अपने घरों में देखते हैं कि माँ हो या बहन हो, पत्नी हो या बेटी हो, यानी घर की महिलाएं घर के हर सदस्य की सेहत का ध्यान को भी रखती है, लेकिन वह खुद अपनी सेहत की आती है रखती है यह बिल्कुल नजरअंदाज कर देती है। इसी सोच को बदलने और महिलाओं को उनके स्वास्थ्य प्रति जागरूक करने के लिए आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य जानते हैं कोस्टा रिका में महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाले विमेंस

सभी को याद दिलाता है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर हर महिला और किशोरी की पहुंच आसान और सम्मानजनक होना चाहिए। आज के दिन हम आप सबसे यही कहना चाहेंगे कि अपने घर की महिलाओं को अपनी सेहत की बात खुलकर साझा करने का माहौल दें और कार्यक्रम सुनने वाली सभी महिलाओं से कहेंगे कि खुद का ख्याल रखिए, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगी तभी आपका परिवार और ये समाज भी आगे बढ़ेगा। स्वस्थ रहिए, सजग रहिए, तभी हम इस वर्ष की आधिकारिक टीम को सफल बना पाएंगे और टीमों अनिवार्य नहीं बहुआयामी संकटों के दौर में स्वास्थ्य अधिकारों, यौन प्रजनन, स्वास्थ्य न्याय को बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना।

आपने कभी सोचा है कि महिलाओं के मासिक धर्म और अवधि को बचाने के लिए इस दिन को चुना गया है। दोस्तों, 21वीं सदी में भी हमारे समाज में इस बात को लेकर अजीब सी छुपी रहती है कि महिलाएं इस बारे में मासिक धर्म के बारे में बात करते हैं, इस पर बात करने से आज भी लोग जाते हैं भी करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि ये कोई बीमारी या शर्म की बात नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक और मानव जीवन के सृजन का आधार है। ये पूरी तरह से सामान्य और प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है। जब हम इस पर बात करने के लिए इससे बचते हैं तो नुकसान हमारे माँ बहनों का भी होता है, बेटियों का भी होता है, और इसी के अभाव में आज भी ग्रामीण और पिछले इलाकों में महिलाएं जो है वो संक्रमण का शिकार हो जा रही हैं, अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रख रही है, मासिक धर्म के समय स्वच्छता का बेहद खास ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए खुलकर समय है, खुलकर बात करने का समय है, ताकि हमारी बेटियों को रोगियों को पीछे छोड़ेंगे, छुट्टी छोड़ेंगे और हर महिला के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित माहौल।

Hay canciones que han requerido la clase. Al ver un papá de su madre, pero al final se unió a nivel de su genial en cada rosa. Le tiene un papá así de guapo que está. Ya bueno, le hacen su producción con tri, me hago producción por más duro, me hago estudios en mi bolsa. Me hago fan de su filme en la noche. Su parte por el fin de vivo, siete de su. Un chico que ha sido un poco acusado de a toda la nación, y es utilizada para que un filme de este perigo más duro, o sea, no se le justo जब भी महबूब खान से हम ये कह रहा फिल्म इंडस्ट्री में आता है कि खुद से खुद से हुआ था साल 1957 में आई इस फिल्म में ना सिर्फ भाई कुछ ना सोचा बल्कि ऑस्कर के सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में नामांकित होने वाली पहली फिल्म बनी। अभिनेत्री महबूब के अभिनय से प्रति इस फिल्म ने भारतीय के शक्ति और स्वाभिमान को दुनिया के सामने पेश किया। आज भी जब ऑस्कर का नाम आता है तो महबूब खान का नाम दर्ज कर लिया जाता है। उन्होंने आन अंदाज अमर और जोशी की कई बेहतरीन फिल्में की। आन भारत की पहली शानदार अच्छी तरह फिल्म थी जिसने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चमका बजाया। शिव कुमार कपूर और नजदीक जैसे सितारों के करियर संवारने में महबूब खान का बहुत बड़ा योगदान रहा। 28 मई 1964 को इस महान निर्देशक ने दुनिया को अलविदा कह दिया। आज महबूब खान हमारे बीच नहीं है लेकिन बांद्रा का महबूब स्टूडियो और उनकी फिल्में आज के निर्देशकों के लिए पाठशाला की तरह हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि सिनेमा सिर्फ

कौन सी बात से मस्जिद की कंटेंट कॉपी और

जो रिटायर हो गया होंगे और रिटायरमेंट के बाद उन्हें खाली पन बहुत सताता है।

तो खुद को व्यस्त रखने के लिए हमेशा दूसरों की जरूरत नहीं होगी। आप

आधारित अच्छा दूसरे लोगों से दूर भी सकते हैं। घर की सहूलियत से एक छोटा सा बेचक भी शुरू कर सकते हैं। पैसा कमाने से अधिक अपना हम बन सकती है रखता है। लिहाजा के दोस्तों जो दिमाग लगातार कुछ न कुछ नया सीखता रहता है वो समस्या और दूसरी मानसिक रोगों से दूर रहता है। जब हम सकारात्मक करते हैं तो हमारे दिमाग में जो कमाई यानी जो खुशी का हार्मोन है वो रिलीज होता है। अपने रिश्तेदारों और परिवार के छोटे बच्चे हमें भी सामाजिक कामों के लिए भी जोड़ें और अन्य ऑफलाइन जैसे हम उन लोगों का क्लब बनाकर उनसे भी जुड़ सकते हैं और दोस्तों के साथ घूमने की योजना भी बना सकते हैं।

इसलिए मौसम तापमान जो है इसमें तापमान जैसे 26 दिसंबर और 26 सेल्सियस का न्यूनतम तापमान 29 दिसंबर

circa 100 metri di altitudine all'Università di Lenti e da

0: पुत्री मिशन पर सभी के जीवन से जुड़ी कुछ यादें,
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद सूट उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे
0: सुनना न भूले। कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई

0: को मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर।

बैठा

के साथ हो लेते हैं। विविध भारती के साथ चलिए सफर में आज चलते हैं हम और आप।

शमनोदय हमारे नए श्रोताओं के लिए हम बता देते हैं www.facebook.com/bbsmumbai के इस पेज पर

activity based on down to low इबारत और बहुत सारे प्रोग्राम में हमारे पास बहुत सारे कमरे की भेजे हैं, बहुत सारी खुशियाँ हमने देखी हैं। आपने जो गीत सुने हैं वो भी बड़े ही मुकम्मल हैं आज के करके ही, तो चलिए देखते हैं हमारे और भी शब्दों को कैसे सुनते हैं।

0: को चल सभी उज्जवल भविष्य की शानदार उड़ान।
1: चुनाव पहाड़ी दिन को लेकर आप अपनी बातें आप अपनी यादें या फिर अगर इस बार भी आप गए हैं घूमने के लिए तो वो बातें भी हमसे साझा कर सकते हैं और ये तो बताइए कि पहाड़ों की कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगती है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि नमस्कार आज की इबारत बहुत ही अच्छी

Farina salita, la pizza.

हम आकाशवाणी से सूत्र वेद विभाग की केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम के 100.9

जान से पारंपरिक पहनावे होते हैं, जैसे केदारनाथ की

चीजों को खरीदने से हम हमारे दिल को एक खुशी तो मिलती ही है, साथ ही साथ यहाँ के लोगों को जो रोजगार है वो भी मिलता है, क्योंकि ये चीजें बनाना इनका एक पारंपरिक रिवाज का हो जाता है जो इनका इनके जीविकोपार्जन के लिए बहुत जरूरी होता है। एक छोटा लिखने में पहाड़ों का अंदराज के प्रदेश में बर्फीले आदि शब्दों की भी लगने वाली है और कुछ गीत भी इन्होंने सजाए हैं बताए हैं। और एक और छोटा हमारे लिखते हैं कि पहाड़ के सुंदर कृतियों में से एक है ऊंचे ऊंचे पर्वत, वहाँ की हरियाली जो अपने बर्फ से हवा मन को शांति और आनंद

होते हैं, जो बड़े सुंदर होते हैं, जहाँ फूल बहुत ही अलग तरीके के होते हैं, वो भी आपने देखे हैं, तो वो हम देख सकते हैं। एक और छोटा सा लिखा है, प्रकृति के नैसर्गिक रूपों का स्वाद चखना हो तो एक याद के रूप में समझना चाहते हैं आप अगर, तो आम शहरी जिंदगी से बाहर निकल किसी भी पहाड़ पर सैर करना चाहिए। पहाड़ों पर कहीं आप ऊंचे पेड़ों के पत्तों से इस जमीन की खुशबू ये आपको ऐसी शीतलता प्रदान करती है, मन इसी से घूमने लगता है। तो आप ये बताइए कि जब आपने पेड़ों की बात करी है तो ये ठंड प्रदेश, यानी अगर खास हम इसी की बात करें तो यहाँ एक बड़ा ही सुंदर सा पेड़ होता है जिसके पत्ते बड़े मशहूर हैं, क्योंकि ये पत्ते मौसम के हिसाब से रंग बदलते हैं। सदा तो इन किस्म के बारे में बताइए। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने शिकारा लिखा है जो कश्मीर के खास नाव है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि गर्मी में ठंडे और बर्फीले पहाड़ की सैर मानसिक शांति और सुकून के लिए

पर्वत मालाएं हर पहाड़ अपने भीतर अलग कहानी अलग सुकून और अलग संगीत समझ रहे हैं। गर्मियों के मौसम में पहाड़ों की सुंदरता अपने चरम पर होती है। बर्फ की चादर हटने के बाद हरी भरी वादियां, ठंडी और ताजा हवाएं और रास्तों पर पसरा सन्नाटा मन को असीम सुकून देता है। जब सुबह के समय पहाड़ों से धुंध का पर्दा हटता है तो ढलानों पर बसे छोटे छोटे गाँव और चमकती हुई बर्फी चोटियाँ किसी जादू सपने जैसे दिखाई देती हैं। यहाँ के साथ ही प्रकृति वैभव और पहाड़ों का शांत वातावरण मन मोह लेता है। पर्वत केवल धरती का श्रृंगार नहीं बल्कि भावनाओं का वो संसार है जहाँ हर पर्वत अपना एक हिस्सा छोड़ आता है। आपने एक समझा

那个身体管嘛，就是辛苦，哦，你说说的，啊，反正不是你看的，啊，巴东不是你的，马上没白卡，啊，好的，是，那哈，啊，俄罗斯方面是，巴东是白色的，对，啊，巴勒斯坦东的，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，और जिस गांव का जिक्र है वो गांव जो गीत हमने आपको सुनाया उस गांव के बारे में आपको लिखना है कि क्या ये गांव सचमुच अस्तित्व में है ये कौन सा गांव है

हम आपको सम्मानी जा रहे हैं।

थी। ये लकड़ी से सामान होते हैं जिनमें नक्काशी की जाती है, जैसे किसी में अखरोट की कुछ अखरोट की लकड़ी पर चीज़ों के लिए भी ये जगह बहुत पसंद है। क्या आप इस जगह गए हैं तो हम जरूर भेजें। और ऐसे कुछ एक शहर हमारे देश में भी कुछ एक नहीं बल्कि बहुत सारे शहर हैं। और अगर हम बात करें शिमले की बात करें, अगर हम बात करें मसूरी की बात करें,

और

देखने को मिलती है। हम इतने आक्रामक और संवेदनशील हो गए हैं कि हमें एआई कहना गलत नहीं होगा। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज हम कहीं ज्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन हम में भावनाओं की कृत्रिमता बढ़ती जा रही है। एक ऐसा दर्द पनप रहा है जो कि तब होता है जब शरीर से तो कोई सामने हो पर आत्मा से गायब हो।

को दे पाता है। लेकिन आज मदद करने की भावना जैसे खत्म नहीं हो गई हो, व्यक्ति खुद पर आई समस्या के लिए दूसरों की मदद की अपेक्षा करता है, लेकिन वहीं दूसरों को परेशान देखकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता, जिनके पास देने के लिए कोई शो होता है, कोई बजट होता है, कोई लक्ष्य होता है, वो लगभग किसी भी वो सहन करते हुए खुद को जीने और दूसरों को

से दूर से हैं, केवल मनोरथ से नहीं, हम सोचते तो बहुत हैं कि दूसरों की सहायता करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ सोचने भर से कुछ नहीं होता, उसके लिए काम करना पड़ता है। कार्ल जंग ने कहा था, सबसे तीव्र संघर्ष यदि पार कर लिए जाए तो अपने सुरक्षा और शांति की अनुभूति छोड़ जाते हैं, जिसे फिर आसानी से विकृत नहीं किया जा सकता। और फ्रेडरिक नाइट की माने तो जो हमें मार नहीं पड़ता वो हमें और अधिक मजबूत बना देता है। और महाभारत में भी कहा गया है, नायमात्मा बलहीने में लगना, ये आत्मा ये ऊंचाई कमजोरों को नहीं मिलती।

0: के रंगोली हसी के खनक यादों की महक बातों में भूलेगी आत्मीयता की रोली। दो जुड़े विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगे अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम चलाएंगे गीतियों के बीच
2: बधाई हो
0: जिसमें के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग। हिमानी जी साझा करेंगे अपने दिल की बात। जरूर सुनिएगा 2 जून

शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने स्थिति की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री जी किशोर कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज़ बैदर के पास अमरीका और ईरान के बीच

विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई और तीन माध्यमिक ओएसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों

0: oil from Granami, but his father Peter soon succumbed to dysentery, his brother to Sri Sahani. Sri Pradhani ne Delhi mein CBSC adhikariyon ke saath baithne ke baad samvaddataon se baatcheet mein ye baat kahi. CBSC kakshya 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं. उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रहे पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा.
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क्स के बारे में जानकारी मिली, उनको ट्रांसपेरेंटली चाहे कॉपी के माध्यम से उनके आंसर की पूर्ति आप में आए ये वही पर ही लाल जिस

0: एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 21 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 21 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालडोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का पहला राज्य और पुरस्कार का तीसरा राष्ट्रपति है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीपफेक जैसी नई चुनौतियाँ सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in

0: मंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे। कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के बीच आज हुई नाचके की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना एक बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धरमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोकभवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। सिद्धरमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल है। की रिपोर्ट के साथ समाचार भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज गढ़वाल मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं। इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधी सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार

0: को दोबारा खोलना दुबई से विरोध कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनाई गई।
1: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता

0: पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुदीप घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय की सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज साइप्रस ग्रेनेड सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेज से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के दो व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीम और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने त्रिशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश दिलवाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दारुल मस्जिद के नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
1: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहाँ 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बगनी में ईदगाह पर पहुँचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल कई जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज 2 सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से तस्वीर नहार।
0: श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद उल अजहा का त्यौहार वहाँ हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
3: आज श्रीलंका में ईद उल अजहा के लिए बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में एक एक नमाज अदा की गई, जिसमें लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्यौहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता।

सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष में 5.3% रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बालासाहेब निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोले ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोले का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन पीवी सिंधु पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी जो कपिला तथा तनिषा कांस्य सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान खेली को गुंजी को सीधे गेम में 21-9 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कार्यकाल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सेने की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज गलदमरबंदी के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संबंध विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश

0: जून सिटी फैमिली की वर्षगांठ पर हम चलाएंगे खुशियों के बीच
1: बधाई हो
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमालय जी के संग हिमालय जी साझा करेंगी अपने दिल के बाद जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे
2: गुरु भारती से आप सुन रही हैं सभी को सदा बहार नवीन

0: भी प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद केस सीधा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे।
0: तो सुनना न भूलिए कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31।

আমরা মানুষ

0: सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। आज ही आपको भी मेरा नमस्कार। सोनाली आपको और सभी सखियों को, सभी कथाओं को, श्रोताओं को आरती श्रीवास का नमस्कार।
1: और आरती कैसी हैं आप?
0: बस ठीक है, गर्मी में जितना ठीक हो सकते उतना ठीक है कि जो धूप के हाल है, गर्मी के हाल है ना, बस उसी बस
1: नहीं। पर हम अगर गर्मी की बातें करते हैं तो गर्मी ज्यादा लगती है।
0: हाँ, ये बात है,
1: इसलिए हमें ना गर्मी की बात ही नहीं करनी।
0: हमें सोचना नहीं है कि गर्मी है, बिल्कुल गर्मी नहीं है
1: तभी तो हम खुश रह सकते हैं ना। क्योंकि खुश रहने के लिए हमें बस वजह ढूंढना चाहिए, है ना। क्योंकि खुशियों की वजह अगर हम ढूंढते हैं तो सचमुच जिंदगी हमारी बहुत खुश हो जाती है।
0: और मैं तो कहती हूँ वजह की जिंदगी अच्छी आज होते हैं, अगर हम हंसी में मुस्कुराइए, खुशियाँ मनाइए,
1: बहुत प्यारे प्यारे गाने सुनिए, विविध भारती सुनते रहिए, है ना। और आज के विषय बता दें।
0: आज के विषय है, हम बात करेंगे आज अपने बच्चे की जो टीचर टीचर प्रशंसा करते हैं उनके ऊपर। कोई ऐसी बात नहीं है कि हम सभी लोग अक्सर करते हैं कि अपने बच्चे के लिए प्यारे होते हैं तो वो आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। तो इससे हम थोड़ी जैसा कहेंगे कि आप तो नहीं है या आप हैं तो आप भी किसी मतलब इस चीज़ को करते हैं कि जी प्रशंसा करते हैं कितना करते हैं, उसके बारे में आप बताइए। या कोई आपको ऐसा कुछ अनुभव हुआ हो पड़ोसी ने कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा बोल दिया हो। और आज हम बात करेंगे कहानी पद्मश्री के अंदर उसके बारे में
1: कि चन्नम्मा नारियल अम्मा उनके बारे में हम जानकारी देंगे। और साथ ही मुझे कुछ कहना है, इसलिए हमें श्रोताओं से हम गुजारिश करेंगे कि भाई आप लिखिए कि गेमिंग का दलदल क्या है, इसमें आपके इर्द गिर्द के आस पास के लोग इस दलदल में क्या फंसे हुए हैं या आप उससे दूर है, इस विषय पर हमें लिखिए कमेंट। क्योंकि ये कुछ श्रोताओं का सेगमेंट है ना।
0: और एक बात मैं आपको बता दूं सोनाली, इस दलदल में पूरी तरह पहले मैं खुद भी फंसी
1: थी
0: बिल्कुल। और मुझे ऐसा होता था ना कि मैं बस खेलती चल जाऊँ, खेलती चल जाऊँ, और एक लेवल दो लेवल मैंने कहा कि बस इसी तरह से अगले लेवल पहुँच जाऊँ। तो मैंने कहा मुझे हो क्या है, मैं थोड़े टाइम से शुरू कर रही हूँ। तो ये चीज़ से आप आ रही है, इसके बारे में बात करेंगे विस्तार से बाद में। और भी
1: और आज एक खास दिन है, अर्थात ईद उल अजहा, बकरीद भी है आज। तो उस बारे में भी हम बहुत सारे सखियों को, श्रोताओं को शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। और साथ ही उपयोगी टिप्स, ये बहुत जरूरी टिप्स है आज की,
0: ताकि हमारा नेट जो है वो एकदम चलता रहे और हम अपना आराम से विविध भारतीय बिना उसके रोक टोक के सुन सके आराम से। और साथ ही और भी अगर

0: सबसे पहले तो हमारे सभी सखियों को, श्रोताओं को बकरीद या ईद उल अजहा की हम मुबारकबाद देते हैं। और ये जो इस्लाम का दूसरा सबसे प्रमुख और पवित्र त्यौहार है, जो पैगंबर हजरत इब्राहिम की अटूट आस्था, त्याग और समर्पण की याद में मनाया जाता है। ये त्यौहार इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। ये रमजान के खत्म होने के लगभग 70 दिन बाद आता है। ये चांद के देखने पर निर्भर करता है, इसके देश और स्थान के अनुसार इसकी तारीख में थोड़ा अंतर हो सकता है। जी
1: बिल्कुल। और बकरीद के दिन सुबह ईदगाह या मस्जिदों में विशेष ईद की नमाज भी अदा की जाती है।

0: एक ना आनंद की अनुभूति होती है ना, फिर घर में सब लोग मिलते हैं और खुशियों की बरसात होती है। वैसे ही कुछ शख्सियत भी ऐसी होती है जिनके व्यवहार के कारण, जिनके कार्यों के कारण हमें ना हर बार एकदम खुश खुश रहते हैं ना, उनके काम
1: हमें प्रेरणा मिलती है। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके लिए हमें प्रेरणा मिलती है, हम भी कुछ आगे करने का सोचते हैं या हम ये निर्णय लेते हैं कि हमें अपने लिए आगे क्या करना चाहिए। हम ऐसे बैठे हैं तो हमें और कुछ हम क्या कर सकते हैं, अपने टैलेंट को कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं, उनमें से आज हम एक व्यक्तित्व के बारे में बात करने वाले हैं।
0: जी
1: आज हम बात करेंगे
0: जी, जिनका जन्म 6 फरवरी 1957 को उनका हुआ था जन्म, और उनका नाम है श्रीमती चेल्लम्मल, जिन्होंने कक्षा 6 तक की पढ़ाई की और नारियल अम्मा के नाम से जो मशहूर है। और चेल्लम्मल दक्षिण अंडमान के रंगा चांग की रहने वाली है, और चेल्लम्मल 10 एकड़ जमीन पर एकदम अलग तरह से उन्होंने खेती की, जैविक तरह से उन्होंने खेती की।
1: बिल्कुल, और वो जैविक खेती के माध्यम से अनानास, केला, लौंग और अदरक की खेती करती हैं। इसके अलावा वो अपने बगीचे में अनोखे तरीके से नारियल की खेती करती हैं, जिसके कारण वो किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गई और लोग उन्हें नारियल अम्मा कहने लगे।
0: और उन्होंने 150 से अधिक किसानों को जैविक खेती के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने कई सरल तरीके निकाले जिससे नारियल की खेती बहुत आसानी से की जा सके, इसमें लागत भी कम आती है, पेड़ों को भी नुकसान से बचाया भी जा सकता है।
1: और उन्होंने नारियल और ताड़ के पेड़ों को नुकसान से बचाने के लिए सस्ते तरीके से जो है वो हमेशा दूसरे किसानों के साथ अपने विचार साझा करने के लिए तैयार रहती हैं। उन्होंने आसपास के गांव के 170 से अधिक किसानों को प्रशिक्षण भी दिया
0: है, और कृषि कॉलेज और संस्थान अपने छात्रों को अध्ययन के लिए उनके खेत पर भेजते हैं, जहाँ वे नारियल के पेड़ उगाती है। उन्हें दालचीनी, तेज पत्ता, काली मिर्च, पान का पत्ता, रतालू, सुपारी, अदरक, हल्दी, पपीता, केला, चीकू, हेलिकोनिया फूल और गेंदा और बहुत सारी सब्जियों के फसलों को उगाकर उन्होंने अपनी आमदनी में भी बढ़ाई की।
1: इतनी ज्यादा चीजों को उन्होंने, वो भी आज के समय में जब फसलों को इतना ज्यादा जब नुकसान पहुंचता है या इतने रासायनिक चीजों से, उन समय वो जैविक खेती कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। और श्रीमती चेल्लम्मल ने नारियल को चूहों से होने वाले नुकसान पर काबू पाने के लिए नए उपाय विकसित किए। वो अपने खेत में जैविक खेती तकनीकों को अपनाती हैं, साथ ही कीटों से फसलों को होने वाले रोगों और नुकसान से बचाव के लिए भी उन्होंने बहुत से कारगर उपाय विकसित किए जो बहुत काम के साबित हुए।
0: और चेल्लम्मल ने अपने खेत में हरी खाद और गोबर की खाद का उपयोग किया है, साथ ही वो परागण के लिए मधुमक्खी पालन करती है और लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करती है। अंडमान में खेती करती है श्रीमती चेल्लम्मल ने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है।
1: बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी बात है वो मधुमक्खी जो जिसके बारे में चाहते हैं बहुत जरूरी है ना, इस खेती के जीवन को बचाए रखने के लिए। तो वो परागण के लिए बहुत सारी फसलों का परागण करती है मधुमक्खी,
0: देखिए
1: इसके लिए उन्होंने कितना किया। तो बहुत ज्यादा वो समझिए कि पर्यावरण की रक्षा की गई थी और लेकिन उनका अब जो खेत है वो लोगों के लिए कृषि और मॉडल बन चुका है। उनका खेत फसलों और मिट्टी की उत्पादकता को बनाए रखते हुए बहुत अच्छी आय का साधन है। उन्होंने अंडमान में एग्रो टूरिज्म के क्षेत्र में एक अवसर देखा, इसलिए उन्होंने अपने खेत में एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा भी दिया है।
0: हम स्थानीय और पूरे देश के अलावा विदेशों से पर्यटक उनके खेत को देखने समझने आते हैं। और श्रीमती चेल्लम्मल को अब तक बहुत से पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं। उन्हें केरल के नारियल विकास बोर्ड से सर्वश्रेष्ठ नारियल

0: टूरिज्म को बढ़ावा भी दिया है।
1: अब स्थानीय और पूरे देश के अलावा विदेशों से पर्यटक उनके खेत को देखने समझने आते हैं और श्रीमती चिल्लम्मल को अब तक बहुत से पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं। उन्हें केरल के नारियल विकास बोर्ड से सर्वश्रेष्ठ नारियल किसान का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है।
0: और मसालों और फूलों की खेती के क्षेत्र में प्रगति के लिए इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च फाउंडेशन अवार्ड, साथ ही इनोवेटिव फार्मर अवार्ड, ICAR और CIARI फोर प्लेयर द्वारा आयोजित किसान मेले में उन्हें सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार भी मिला है।
1: और द्वीप पर्यटन महोत्सव 2014 के दौरान कृषि विभाग द्वारा राज्य स्तर पर आयोजित फल फूल और सब्जी के लिए प्रथम पुरस्कार और वर्ष 2016 में केंद्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर की ओर से प्रगतिशील सर्वश्रेष्ठ कृषक का पुरस्कार भी आपको मिला है।
0: और उनके अनोखे जैविक कृषि तरीकों, नवाचार और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए उन्हें 2024 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया।
1: और सचमुच ऐसी जब महिलाएं हमारे इर्द गिर्द होती है तो हमें कितना इन्हें गर्व महसूस होता है कि हमारे भारत वर्ष में इतनी सारी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से काम किए और हमारी सरकार उन्हें पद्मश्री से सम्मानित।
0: पढ़ाई ना होने का रोना भी नहीं लगता।
1: बिल्कुल,
0: पढ़ाई सिर्फ जिसकी हमें एक डिग्री देती है, हमें पूरा हमारा ज्ञान हमारा विकसित करती है, लेकिन जो हमारे अंदर जो कला होती है ना, वो हर चीज को जो कला होती है, जो मिट्टी को भी चीजों को चेहरा वो कला को अपने निकालना चाहिए।
1: और अब एक संदेश के लिए,
2: जो जीवन सखी सहेली के अंदर में सजी हुई खुशियों की रंगोली, धरती की खनक, यादों की महक, बातों में भुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जुड़े विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगे अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
3: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की बरसात पर 2 जून को।
2: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम चलाएंगे स्मृतियों के

0: एक झूठ के पीछे हमें 100 झूठ बोलना पड़ता है। और क्या होता है ना, बच्चों को जब ये झूठ सुनने की आदत हो जाती है ना, तो उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि उनकी झूठी तारीफ हो। और फिर आगे चल के जब उन्हें आगे की दुनिया में जाके अगर किसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो वो टूट कर बिखर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जो है ना असफलता का सामना करने की आदत ही नहीं होती है।
1: उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, अब हमारे साथ जब आप उनके सामने उनकी तारीफ कर देते हैं तो उसमें उनको लगता नहीं कोई बात नहीं, हमारे अगर आवाज अच्छे नहीं आए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मेरी मम्मी या मेरे जो परिवार वाले वो कह ही देंगे, किसी ने कुछ तो कह ही देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फिर वो उसकी मेहनत भी नहीं करते, वो अपनी पढ़ाई को लेकर इतना सीरियस भी नहीं होते और फिर अपने खेल में उसे कहें से अपने दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं। जबकि आप उनको समझाएं कि वो चीज़ों को कि नहीं तुम्हें आगे अच्छा करना है, वो जो जो चीज उनकी रिजल्ट है वही आप सबको बताएं, तो उनको लगेगा नहीं हमें अब आगे करना पड़ेगा।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है, बच्चों की झूठी या बड़ा चढ़ा कर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के बजाय उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। इससे बच्चों में अहंकार आ जाता है, वे वास्तविक चुनौतियों का सामना करने से डरने लगते हैं, माता पिता की विश्वसनीयता भी कम हो जाती है। बिना किसी खास वजह से तारीफ करने से बच्चे खुद को हर चीज में परफेक्ट समझने लगते हैं। जब वे असल दुनिया में असफल होते हैं तो गहरे गुस्से या निराशा में चले जाते हैं। जब बच्चों को लगता है कि पहले से ही सब कुछ जानते हैं और हमेशा सर्वश्रेष्ठ है, तो उनके भीतर नई चीजें सीखने मेहनत करने की ललक कम हो जाती है। उनके प्रयास की तारीफ करें, परिणाम की नहीं, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें तो फर्स्ट आना ही है, कहना तो ये चाहिए कि मुझे अच्छा लगा तुमने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितनी मेहनत की। प्रयास अपना होता है, परिणाम दूसरों के हाथ में होते हैं, इससे बच्चों में लगन बढ़ती है। और बहुत बार बच्चों के टीचर अभिभावकों को शिकायत करते हैं, कुछ भी करने पर कहता है तो मैं कर लूंगा, पर बहुत तेज हो सकता कुछ नहीं है, तो टीचर की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी है, उन्हें सिखाए। और हर काम परफेक्ट हो कोई जरूरी नहीं, उस काम में निराशा भी नहीं होना चाहिए।
1: और लेकिन इस चीज को लेकर इतना ज्यादा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए कि सामने वाले को आप तो बच्चे का जो मनोबल है ना वो जो उसकी ललक होती है वो कम हो जाती है। ये हमारी श्रोताएं जो लिखते हैं कि बात अगर झूठी प्रशंसा की हो तब बच्चे को क्या बड़ों की भी नहीं करनी चाहिए, और अरे विजय भारती की भी झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, हालांकि वो हमें ऐसा मौका कभी देता नहीं कि हमें उसकी झूठी तारीफ करनी पड़े। तो झूठी प्रशंसा खासकर बच्चों की तो नहीं करनी चाहिए, इससे उनकी सीखने की क्षमता कम हो सकती है, आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। इसलिए झूठी तारीफ के बजाय उनके द्वारा किए गए प्रयासों की सच्ची सराहना करनी चाहिए और उन्हें सकारात्मक फीडबैक देना चाहिए।
0: क्या बात है, एक हमारे
1: आगे चल सकते
0: जी, एक हमारे साथी लिखते हैं, तुम सबसे होशियार हो, तुम कभी गलती नहीं कर सकते, तुम

कमियों को समझ नहीं पाता। अतः माता पिता को चाहिए कि बच्चों की तुलना कभी दूसरों से ना करें और ना ही झूठी प्रशंसा करके उन्हें भ्रम में रखें। सच्चाई, प्रोत्साहन और सही मार्गदर्शन ही बच्चे के अच्छे भविष्य की नींव बनते हैं। इसलिए बच्चों से प्रेम करें, उनका उत्साह बढ़ाएं, लेकिन प्रशंसा हमेशा सच्ची और उचित होना चाहिए। बिल्कुल रिकॉर्ड होता है, उन्होंने बहुत बहुत बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने लिखा है कि बच्चों की झूठी ये अत्यधिक प्रशंसा उनके विकास के लिए हानिकारक हो सकती है। ये उन्हें आत्मबुद्ध बना सकती है, असफलता से डरने वाला बना सकती है और उनमें वास्तविक क्षमताओं के प्रति संदेह पैदा कर सकती है। सच्ची और विशिष्ट कार्य जैसे कि मेहनत, प्रक्रिया या व्यवहार की, इनकी आप तारीफ करिए। उनकी आत्मविश्वास और लचीलेपन की तारीफ करिए। झूठी प्रशंसा के जो जो दुष्प्रभाव है हमें देखने को मिलते हैं कि वो बच्चा अहंकारी भी हो जाता है, आत्मबुद्ध भी हो जाता है और साथ ही अनावश्यक तारीफ बच्चों को अपने साथियों से ज्यादा श्रेष्ठ महसूस कराती है, जिससे वो उनमें अहंकार पैदा हो जाता है और वो विफलता से डरने भी लगते हैं और उनमें लगता है कि मैं बेहतरीन हूँ, तो वो एक झूठ उनके अंदर आ जाता है। एक हमारे साथी ने लिखा है आरती कि अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा, वैसे देखा जाए तो मैं कभी अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा नहीं करती, लेकिन हाँ जब भी वे कोई अच्छा काम करते हैं तो मैं उनकी दिल से तारीफ जरूर करती हूँ। मैं उन्हें कहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। मेरी बात सुनकर बच्चे खुश भी हो जाते हैं और उन्हें आगे और अच्छा करने का मोटिवेशन भी मिलता है। मेरा मानना है कि बच्चों की सही समय पर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और उन्हें बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ बच्चों की हौसला अफजाई जरूर होनी चाहिए, बस झूठी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए। इस तरह की बात लिखते हैं, इसलिए कि तुम सबसे होशियार हो, तुम कभी गलती नहीं कर सकते हो, इस तरह की चीजें उन्होंने लिखी है। और साथ ही बच्चों की एक और जो श्रोता है जो लिखते हैं कि बच्चों की झूठी प्रशंसा करना उनके विकास के लिए नुकसानदायक हो सकता है और असफलता मिलने पर बच्चे जल्दी टूट जाते हैं, जोखिम लेने से डरने लगते हैं, वो नई चुनौतियां लेने से बचते हैं और उनको तारीफ की लत लग जाती है। वो केवल दूसरों को खुश करने के लिए काम करने लगते हैं और उनके अंदर सीखने की इच्छा खत्म होने लगती है। उन्हें लगता है कि वो पहले से ही सर्वश्रेष्ठ हैं, उन्हें और मेहनत की जरूरत ही नहीं है। और परिणाम की वजह अगर बच्चे की मेहनत की हम तारीफ करें तो ज्यादा बेहतर होगा कि तुम बहुत अच्छे हो की वजह कहें कि तुमने ये चीज़ बहुत ध्यान से बनाया है, तो और साथी गलती होने पर उसे प्यार से सुधारने की चाहिए। बहुत अच्छी बात। और एक हमारे साथी ने कहा कि मैंने अपने देखा है कि जिसका बच्चा औसत मेहनती भी नहीं है, जिसमें कोई शिकायत नहीं, हर बच्चा अपना अपना व्यक्तित्व होता है, उसके गार्जियन अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा बेटा जब 12 तक अच्छे नंबर नहीं लाया तो मेहनत भी नहीं करना चाहता, तो क्यों उसे IAS IPS का ख्वाब दिखाया जाए। एक दिन कुछ ऐसा ही उसके साथ हुआ और वो डिप्रेशन में चला गया, और भगवान का शुक्र है लड़का आज सही सलामत और अपने साधारण सी नौकरी और जिंदगी में खुश है। हमेशा ये ध्यान रखें कि भाग्य चमत्कार कभी कभी ही

0: देखी बात असली नकली चेहरा बता ही देता है। हमारे साथी लिखते हैं रणदी कि बच्चों की तारीफ तो कीजिए परंतु उन्हें चने के झाड़ पर मत चढ़ाइए। अक्सर झूठी प्रशंसा करने से वे आत्म मूल्यांकन नहीं कर पाते और आभासी दुनिया में जीते हैं। ये बहुत सही बात है
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता जी लिखते हैं कि बच्चों की हर बात पर झूठी प्रशंसा करना सही नहीं होता क्योंकि इससे वो अपनी असली मेहनत और काबिलियत को समझ नहीं पाते। और मुझे लगता है कि जब हम बिना वजह हर काम की तारीफ करते हैं तो बच्चे धीरे धीरे सच और दिखावे का फर्क भूलने लगते हैं। सच्ची और सही प्रशंसा बच्चों को आत्मविश्वास बढ़ाती है लेकिन झूठी प्रशंसा उन्हें केवल दूसरों की तारीफ पर निर्भर बना सकती है। इससे वो असफलता को स्वीकार करना भी मुश्किल समझने लगते हैं। और मेरे अनुसार बच्चों को उनकी मेहनत ईमानदारी और कोशिशों के लिए सराहना मिलनी चाहिए न कि सिर्फ खुश करने के लिए। इससे वो जीवन में सच्चाई आत्मविश्वास और मेहनत की असली कीमत को समझ पाते हैं।
0: एक साथ लिखते हैं कि बच्चों की झूठी बढ़ा चढ़ा कर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास और मानसिक विकास को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे बच्चे वास्तविकता से दूर हो सकते हैं, आलोचना को स्वीकार करने में असमर्थ हो सकते हैं। सच्ची और सही तारीफ करने के लिए उनके प्रयासों पर ध्यान दें न कि उनके परिणामों पर। इन्हें मिलजुल कर हमारे सभी साथियों ने इसी तरह की बात लिखी है। एक साथ लिखते हैं कि बच्चों की परवरिश करना आसान नहीं है, उनके लालन पालन में हमेशा सकारात्मक रवैया जरूर रवैये की जरूरत होती है जिससे कि वो प्रोत्साहित महसूस हो। बच्चों को जब माता पिता से प्रोत्साहन मिलता है तो उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, वे एक कामयाब जीवन जीते हैं। लेकिन जरूरी ये है कि वो प्रोत्साहन कैसा हो, जरूरी है कि प्रोत्साहन भी सही तरीके से किया जाए जिससे कि वो पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करे और साथ में अपने मनपसंद क्षेत्र में भी सफलता पाए। बिल्कुल, यानी मिलजुल कर हमारे सभी साथियों ने इसी तरह की बात ली थी कि भैया अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा ना करे, जैसे है बच्चे और उन्हें उनके बारे में बताएगी भी हाँ इतने ही नंबर मिले हैं उन्हें, उसमें कोई भी बुराई

बचने के लिए कोई नया शौक पाले, व्यायाम करे या किताबें पढ़े। और एक श्रोता जो लिखते हैं कि आज के जो जो बच्चे गेम में लगे रहते हैं, उसमें कंप्यूटर गेम में या मोबाइल में लगे रहते हैं, वो वास्तविक दुनिया से उनका जुड़ाव कम होने लगता है और शुरुआत में ये गेम मनोरंजन और तनाव दूर करने का साधन लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही आदत गेमिंग का दलदल बन जाता है जिससे निकलना कठिन हो जाता है। जब ऐसे गेम खेलने की लत में इतना डूब जाता है कि वो अपनी पढ़ाई, काम, परिवार और सामाजिक जीवन को नजरअंदाज करने लगता है, तो ये आदत धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर आने लगती है। और याद रखिए, गेम खेलना बुरा नहीं है, लेकिन संतुलन बहुत जरूरी है। पढ़ाई, खेल कूद और परिवार के समय के साथ गेमिंग को सीमित रखें ताकि हम इस दलदल में न फंसे और अपने भविष्य को सुरक्षित रखें। और अब क्या करें, एक गीत सुनते हैं।

0: कहते हैं कि आजकल गेम खेलने की लोगों में लत सी लगी है। लोग देर रात तक जाकर मोबाइल या लैपटॉप पर गेम खेलते हैं। कई बार तो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, ना तो खाने की चिंता होती है, ना उन्हें कुछ काम की चिंता होती है। कुछ ऐसे गेम तो उन्हें ऐसे टास्क देते हैं जिसके कारण लोग अपने जीवन को भी समाप्त कर देते हैं।
1: बहुत ऐसे गेम आ गए सदन
0: जी, और साथ ही एक सोचा कि देखते हैं कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति ऑडियो या ऑनलाइन गेमिंग में इतना उलझ जाता है कि उसको अपनी दैनिक दिनचर्या, नींद और मानसिक स्वास्थ्य पर से नियंत्रण हट जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसे आधिकारिक तौर पर गेमिंग डिसऑर्डर के रूप में वर्गीकृत किया है। और वैसे अच्छी ऐसी बात है कि ये जो मोबाइल

0: सफाई ना हो, इनमें अगर नेट ना हो तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है।
1: सही बात है, फिर हम एकदम फोन लेके बैठे रहते हैं कि क्या करें डिब्बे काम।
0: नहीं नहीं नहीं, पर अगर हमें बहुत ऑफिशियल काम करना है, हमें अगर कुछ काम करना है तो बात समझ सकते हैं, पर अगर हमें सिर्फ टाइम पास नहीं हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है कि हम पढ़ना भूल रहे हैं, खेलना भूल रहे हैं, परिवार के साथ बैठना भूल रहे हैं। हमें इन सब बातों का भी ध्यान रखना है कि कोई भी मनोरंजन का साधन होना वो सिर्फ सीमित मात्रा का,
1: वो मनोरंजन तक ही रहना चाहिए, क्योंकि रिश्तों के बीच में या हमारे स्वास्थ्य के बीच में उसको नहीं आना चाहिए
0: जी। और अब वाईफाई की रफ्तार अगर धीमी हो जाए तो क्या करना
1: है? रफ्तार ऐसा लगता है कि हमारे जीवन की रफ्तार है वो
0: धीमी हो गई
1: है। बहुत कभी कभी बहुत जरूरी काम होते हैं क्योंकि हमें इसको करना होता है, लिखना होता है, हमें पढ़ना है, बहुत जरूरी चीजें देखनी है, तो आज तक न्यूज भी आप मोबाइल पे देख सकते हैं। कहीं बाहर है तो हमें किसी को जरूरी देखना है तो वो अगर नेट नहीं सही से चल रहा है या हम अपने जैसे कि हम लोग जब देखते हैं तब पूरी फैमिली जो होती है, अगर पूरी फैमिली ले रखी है उसने वाईफाई से चला रहे हैं तो उसकी रफ्तार अच्छी होनी जरूरी है
0: जी।
1: तो कभी कभी होता है ना कुछ कुछ चीज़ों को हम सावधानी करें तो उससे हम उसकी रफ्तार को बढ़ा भी सकते हैं। तो जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि राउटर को अगर हम सिर्फ बंद करके दो मिनट बाद उसको स्टार्ट करें तो उससे भी स्पीड बेहतर हो जाती है।
0: यानी जो मोबाइल टीवी या लैपटॉप उपयोग में नहीं हो उन्हें नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर दीजिए। कमजोर पासवर्ड होने पर भी लोग जो है नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं, जिससे स्पीड
1: कोई घर के सामने से जा रहा है निकल है तो वो नेट का आसानी से उपयोग कर सकते हो, वहीं खड़े होकर अपना उपयोग करता रहेगा, लेकिन आपकी वाईफाई की जो स्पीड है वो धीरे धीरे रहेगी।
0: साथ ही पुराने राउटर नई तकनीक के अनुसार सही गति नहीं दे पाते, जरूरत पड़ने पर नया राउटर ले। ऑनलाइन पढ़ाई के समय वीडियो डाउनलोड या भारी गेमिंग से बचे ताकि इंटरनेट की गति स्थिर बनी रहे। फोन में चल रहे उन ऐप्स को बंद करें जो बैकग्राउंड में डेटा जैसे ऑटो अपडेट या सिम का उपयोग कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि बैकग्राउंड में चलते रहते हैं जिसमें उनको आप बंद करेंगे तो फिर आपके फोन की स्पीड से बहुत असर पड़ेगा।
0: यानी हमने अभी खोला फेसबुक, थोड़ी देर में खोला व्हाट्सएप, फिर उसके बाद में हम चले गए यूट्यूब पे, तो अगर सारे ऐप खुले हुए हैं अगर हम इस्तेमाल तो सिर्फ एक ही का करेंगे कि टाइम, तो सारे अगर ऐप खुले रहेंगे तो भी हमारे इंटरनेट की स्पीड कम हो सकती है,
1: तो आप उसका भी ध्यान रखें। और साथ ही थोड़ी सावधानी और है, जैसे कि अपना जैसे कि अगर जो आपका राउटर है वो घर के बीचों बीच में ऊंची जगह पर होना चाहिए, और साथ ही जो मोटी दीवार और माइक्रोवेव जैसे बहुत ज्यादा चीजें ऐसी ना तरक्की जैसे टीवी है, टीवी के पास एकदम जाते रख दिया पीछे तो उसका जो सिग्नल है वो सिग्नल तोड़ता है, तो उस वजह से भी आपका स्पीड धीमी हो जाती है, तो उसे थोड़ा सा अलग करके रखें और थोड़ा ऊंचा ही रखें, उसे ऊंची जगह पर लगाएं जिससे कि और बाकी उपकरण उससे उसके आसपास नहीं होंगे तो बहुत बढ़िया स्पीड मिलेगी आपको।
0: और राउटर का जो एंटीना होता है उसे भी अच्छे से सेट करिए जी। दो एंटीना है तो एक को वर्टिकल इन्हें खड़ा रखें और दूसरा एंटीना को हॉरिजॉन्टल इन्हें आड़ा रखें, ये सिग्नल का दायरा बढ़ा देता है।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही एक है ना फ्रिक्वेंसी के बैंड बदलते रहना चाहिए हमें, कि जो तेज फ्रिक्वेंसी का राउटर हमें लेना चाहिए,
1: क्योंकि अगर ज्यादा फोन चलाने में उसको उससे आपको ज्यादा फोन चलाने में तो आप उसी हिसाब से रख लीजिए अपना राउटर, जितनी ज्यादा से ज्यादा चीज की जाती

0: हैं वही जो हम बात कर रहे थे कि राउटर की। तो जैसे ये बताया कि हमने कि आप राउटर को बंद करें और फिर दोबारा चालू करें, तो उससे ये सब ये इसकी जो मेमोरी होती है उसको साफ करता है और साथ ही राउटर की जगह को भी बदलने है। जैसे कि हमने बताया था कि आपको श्रोता लिखी हुई है को घर के बीच में रखें और इसे ऊंचाई पर स्थापित करें और कई सारी बाधाओं से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उसे दूर रखें और अनचाहे डिवाइस जो भी रखें उसके आकर उनको हटा दीजिए और वाईफाई का पासवर्ड बदलें और ताकि और कोई इसका इस्तेमाल न कर सके। साथ ही बैकग्राउंड जो डाउनलोडिंग बंद करें, ये वही चीज़ें जो है जो हमने अभी बताई वही हमारे श्रोता लिखकर भेजा है। तो एक और हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि धीमी वाईफाई की स्पीड को बढ़ाने के लिए सबसे आसान और असरदार तरीका है अपने राउटर को रीस्टार्ट करना और इसके अलावा वही उनका कि उनकी जगह पर लगाने से भी इसकी स्पीड बेहतर होती है।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं आरती कि ज्यादा गेम खेलने से मेरा भी स्कूल का रिजल्ट बिगड़ा था, मुझे भी कंप्यूटर गेम की जरूरत लगी थी लेकिन अब छोड़ दी है। क्या बात है, तो पढ़ाई हो
0: तो पढ़ाई हो आपको अपने क्योंकि गेम की लत लग जाती है, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। आपने उससे थोड़ा बहुत अच्छी चीज करी आपने। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि देर रात तक गेम खेलने से नींद का स्तर बिगड़ जाता है जिससे डिप्रेशन और एंग्जाइटी का खतरा बढ़ जाता है और साथ ही एकाग्रता में कमी भी आती है। लंबे समय तक स्क्रीन पर वर्चुअल गेम खेलने से वास्तविक दुनिया से पढ़ाई पर या काम पर ध्यान लगाने में परेशानी हो सकती है।
1: ये तो है ना, टेक्नोलॉजी के फायदे भी है और नुकसान भी है।
0: बिल्कुल,
1: तो हमें उसके फायदे लेना चाहिए और नुकसान को हमें बाय बाय कहना चाहिए ना।
0: बिल्कुल, इसको ध्यान रखिए, इतना मत किसी चीज में लग जाइए कि वो आपको नुकसान पहुंचाने लगे।
1: और अति हर चीज से बिल्कुल अति सर्वर से बच गए तो भाई अति से दूर रहे। बस वो इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, हम इतने इसके माध्यम से हम लोगों से जुड़ रहे हैं, हमें कितना ज्यादा फायदा हो रहा है इन टेक्नोलॉजी की बदौलत, उसका हमें फायदा उठाना चाहिए। उसके जो नुकसान है उसके हमें बचना चाहिए। अब क्या करना चाहिए,
0: एक

আমার কাছে অনেক জিনিস করতে।

0: मैडम खांजीपीर से जब्बार मोहम्मद।
1: कहाँ से बोल रही हैं?
0: ये मैडम खांजीपीर उदयपुर से झीलों की नगरी है उदयपुर, वहाँ से बोल रहा हूँ मैडम।
1: जी कैसे हैं आप बताइए, उदयपुर के बारे में बताइए, अभी गर्मी के मौसम में उदयपुर का क्या हाल है?
0: तो मैडम क्या कह रहे हैं, उदयपुर तो वैसे बहुत अच्छी नगरी है, झीलों की नगरी है
1: जी।
0: अभी 40 और 45 डिग्री के आसपास गर्मी है उदयपुर में।
1: अच्छा गर्मी इतनी पड़ रही है?
0: जी जी मैडम गर्मी तो है उदयपुर में, लेकिन यहाँ झीले हैं, चारों तरफ झीले फैली हुई है और हरियाली बहुत है, तो इससे कुछ गर्मी का असर कम रहता है
1: जी।
0: और काफी टूरिस्ट वगैरह आते हैं यहाँ, कई अच्छी जगह देखने लायक जगह है, यहाँ झीले हैं काफी, क्या कह रहे हैं धार्मिक नगरी भी, कई दर्शनीय स्थल है, श्रीनाथ जी का मंदिर है, जगदीश जी का मंदिर है और दो दरगाहें भी देखने लायक है, यहाँ मस्पत बाबा की दरगाह फतेह सागर के आसपास और एक अंबावगढ़ पे भी एक गण शहीदा की दरगाह है, पहाड़ी पे काफी अच्छी दरगाह है, काफी जायरीन वगैरह आते हैं। उदयपुर से कुछ दूर श्रीनाथ जी का मंदिर भी बहुत फेमस है, यहाँ भी टूरिस्ट आते हैं और झीलें भी अच्छी है
1: जी। आपने उदयपुर की सारी दुनिया हमारे सामने साकार कर दी है कि टूरिस्ट जब आते हैं तो किन किन चीजों को देख कर जाते हैं, तो मुझे बताइए कि बकरीद का जो त्योहार है वो असल संदेश उसका क्या है? आपने अपनी जिंदगी में कभी कोई ऐसा अपनों की खुशी के लिए त्याग किया?
0: मैडम त्याग तो ये है कि गरीबों की मदद करना चाहिए, जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए, करते हैं क्या
1: जी।
0: बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है और मैं फिल्म मर्यादा का गीत सुनना चाहता हूँ।
1: कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: मोहम्मद रफी साहब का है, मोहब्बत के सुहाने दिन।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत सुना है आपने, चलिए सुनिए अपनी पसंद का गीत।

0: कृष्ण कुमार दादी बोल रहा हूँ, गाँव चौकिया जिला बालोतरा राजस्थान से। तीसरी बार बात हो रही है,
1: क्या बात है।
0: नियमित सुनते हैं बस आपके प्रोग्रामों को, अभी मनसा गीत शुरू हुआ उसको भी मैं नियमित सुनता रहता हूँ। अभी दो दिन पहले ही आपकी प्रस्तुति को सुना हूँ।
1: क्या बात है, तो सुबह में सफर के लिए आप देखते हैं कि नहीं लिखते फेसबुक पे?
0: हाँ लिखता हूँ मैम, पर क्या कि दिन को एक बजे जो प्रोग्राम आता है उसमें क्या थोड़ा काम में बिजी होता हूँ, तो सोशल मीडिया पे थोड़ा कॉमेंट कम कर पाता हूँ। बाकी जब भी पोस्ट देखता हूँ तो उसके बारे में प्रोग्राम सुनता हूँ तो लिखता जरूर हूँ।
1: लिखा कीजिए ताकि हमें उन संदेशों को पढ़ने में बड़ा आनंद भी आता है।
0: और पत्र भी भेजे अभिजीत भारती के स्टूडियो में, जैसे समय मिलेगा वैसे भेजते रहेंगे तो शामिल होते रहेंगे।
1: जी मनचाहे गीत के लिए बिल्कुल आपका स्वागत रहेगा हर कार्यक्रम में।
0: बिल्कुल दीदी, बहुत अच्छा
1: जी। बताइए थोड़ा मौसम के बारे में, आपकी बालोतरा में कितनी गर्मी हो रही है?
0: बताइए कि मरुस्थली इलाका है तो इन दिनों तो गर्मियों के दिनों में मौसम कैसा होगा? ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और तेज आंधी और गर्म लू से भरी हवाएं चल रही है, बस वही मौसम है रेगिस्तान में।
1: जी, तो दिन भर जो गृहिणी है उनका वक्त तो घर की सफाई करने में निकल जाता होगा, क्योंकि जब हमारे
0: देखो
1: राजस्थान में जब आंधी तूफान आता है तो वो पूरा छप्पर फाड़ आता है।
0: वही बात है कि सुबह जब घर की साफ सफाई होती है और शाम तक होते होते पूरा घर वापिस रेत के कणों से और धूल से भर जाता है, क्या करें, सफाई तो करनी पड़ेगी सुबह शाम दोपहर क्या। ये तो दिन को थोड़ी गर्मी तेज रहती है, बाहर इधर उधर निकलना नहीं होता है क्योंकि गर्मी का मौसम है और टेम्परेचर भी यदि अपने यहाँ इधर हमारे बाड़मेर जैसलमेर और ये सब बारह तरह सही कम से कम 46 से 47 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। बस वही बात है,
1: और भयंकर गर्मी
0: के
1: अपना ध्यान
0: रखिएगा स्वास्थ्य का। और वैसे प्रोग्रामों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि जो भी प्रोग्राम इन दिनों आ रहे हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं और ये फोन प्रोग्राम भी आ रहे हैं, आपने जो नए कुछ प्रोग्राम शुरू किए हैं उनका भी स्वागत है। और मैंने खास करके मैं छायादित प्रोग्राम का बहुत सुबह और शाम को धीरे ये वापिस आता है 5 बजे रिपीट, तो मैं उसको सुनना जरूर पसंद करता हूँ क्योंकि मैं दो बार सुनता हूँ, कभी कभी नहीं सुन पाऊँ तो मिस हो जाता तो फिर वापिस यूट्यूब पे जाकर कहीं कहीं मिल जाता तो सुन लेता हूँ। छायादित में दीदी आप जो ये प्रोग्राम अपनी भावनाओं जो व्यक्त करती है और उस हिसाब से गीत भी उसी अनुरूप होते हैं तो वो क्या कि चलो थोड़े दिल को छू लेने वाले होते हैं, आपके समय जब प्रोग्राम आता है तो उसकी बात ही कुछ अलग है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, बताइए कौन से गीत सुनवाए आपको?
0: दीदी आज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का उनका अपने जो संगीतकार जुड़ी थी उनका दिन है तो उस उपलक्ष्य में मैं उन्हीं के संगीत पद किया एक गाना सुनना चाहूंगा। हम जोली फिल्म से आशा जी और रफी साहब की बुलंद आवाज में गाना है, ढल गया दिन हो गई शाम जाने दो जाना।
1: आपकी पसंद आएगी।

0: पुराना जिला रतलाम से शेख हैदर खान बोल रहा हूँ
1: जी। स्वागत है आपका हैदर साहब।
0: और क्या हाल चाल मैडम?
1: अच्छे हैं, आप बताइए।
0: बस बढ़िया है, यहाँ भी मतलब अभी तो थोड़ी गर्मी का प्रकोप ज्यादा है एमपी में, तो लो बहुत चल रही है मैडम अभी फिलहाल तो।
1: जहाँ बात की जा रही है वहाँ पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा तापमान है और अलग अलग जगहों पर पता चलता है कि किस तरह से लोग इस गर्मी में बेहाल हुए जा रहे हैं। तो बताइए हैदर साहब, अभी जो बकरीद है, बकरीद को किस तरह से मना रहे हैं आप और क्या संदेश देना चाहते हैं बकरीद के मौके पर?
0: संदेश को ये देना चाहते हैं मैडम के मतलब ये जो अपना भारतवर्ष ये तो त्योहारों का देश है और सभी को मतलब अपने अपने त्योहार मनाने का अधिकार है, तो शांति और मतलब स्वभाव से त्योहार मनाए।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आप अपना त्योहार सुख और शांति के साथ मनाए, हम ये उम्मीद करते हैं। और आप हमारे पुराने श्रोता हैं, क्या क्या सुनना पसंद करते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों में?
0: विविध भारती के प्रोग्राम तो मैडम जो अभी 90 साल पूरे हुए हैं, तो हम तो 1980 से आकाशवाणी पूरे हुए हैं मैडम।
1: 1980 से सुन रहे हैं?
0: हाँ 1980 से ही सुन रहे हैं, तो रेडियो पे प्रोग्राम सुनते ज्यादातर, तो अभी भी मेरे पास रेडियो ही है।
1: बताइए कौन सा गीत सुन रहे हैं आप?
0: ये रंजा फिल्म का गीत है, रफी साहब की आवाज में, ये दुनिया में फिल्म मेरे काम की नहीं।
1: बहुत ही सुंदर गीत सुनना चाहते हैं आप, सुनिए अपनी पसंद का गीत।

0: अंदर भी नेक काम किए जा सकते हैं। मैंने देखा है अक्सर पेड़ों को छांव देते हुए।
1: क्या बात है, क्या बात है, नाम तो बताइए अपना।
0: मोहम्मद रफी मंसूरी, इंदौर से। कैसे हैं आप?
1: हम अच्छे हैं, आप बताइए।
0: हम भी अच्छे हैं मैडम।
1: अच्छा होना ही चाहिए
0: जी।
1: हमारे कार्यक्रम सुनते हैं लगातार?
0: हाँ हाँ सुनते हैं मैडम
1: जी। तो आप बताइए, बकरीद मनाएंगे आप
0: जी,
1: तो बकरीद का असली महत्व क्या है, ऐतिहासिक महत्व क्या है आपकी नजरों में?
0: मैडम इसका ऐतिहासिक महत्व है कुर्बानी और आपस में मिलजुल कर रहना और प्यार बांटना और दूसरों को भी खुशियाँ देना।
1: जी बहुत सही कहा आपने। और इसी भावना को मद्देनजर रखते हुए हम अपना हर त्योहार मनाते हैं। क्यों
0: जी,
1: बताइए अपने बारे में क्या करते हैं आप?
0: हम सिलाई करते हैं मैडम।
1: अच्छा सिलाई करते हैं घर पे या किसी दुकान में जाके?
0: नहीं बाहर गोदाम पे जाके।
1: दिन भर सिलाई का काम होता है?
0: हाँ दिन भर सिलाई का काम भी होता है और अपना रेडियो भी चलता रहता है।
1: रेडियो तो फिर आप लोगों की खुराक में शामिल है।
0: हाँ खुराक में
1: भाई, मुझे लगता है हमारे श्रोता खाना भले कभी खा लेते होंगे लेकिन विविध भारती सुनना नहीं भूलते।
0: जी
1: क्या सुनते हैं आप?
0: मैडम हमारा घनी बेट का जूट का काम, बारदान बारदान जिसमें अनाज भराता है, गेहूँ उसको रिपेयर करते हैं हम सुबह और पीछे।
1: अच्छा जूट के जो बैग है जिन्हें हम बोरा कहते हैं, उसको आप जूट के उसमें सिलाई करते हैं?
0: जी जी।
1: तो नए बनाते हैं या पुरानों को रिपेयर करते हैं?
0: मैडम पुराने जैसे कोई कट लगी रहती है या चूहे काट देते हैं तो उसको रिपेयरिंग करते हैं।
1: तो ये अच्छे से रिपेयर हो जाता है क्या? क्योंकि वो तो सुतली से होती है, वो कहीं ना कहीं से कट जाती है, उसको सिलना आसान होता है? टेबल लगाते समय ध्यान रखते हैं?
0: हाँ मैडम थोड़ा पक्की सिलाई करना पड़ती है और फिर बाद में तो फिर वैसे उठा पटक होती है, अनाज भराता है तो फिर वो फट जाते हैं, तो फिर हमारे पास डबल से आते हैं फिर हम रिपेयर करते हैं।
1: इस तरह से उसको बना के रखते हैं ना, क्योंकि बोरी है वो फट भी जाती है कई जगह से।
0: जी
1: फट जाती है। अच्छा बताइए कौन से गाना सुनवाए आपको?

0: तुमने ये विविध भारती से।
1: हेलो मैडम जी, नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: हाँ जी मैडम जी, हमारा पहली दफा कॉल लगा है विविध भारती में।
0: स्वागत है आपका फिर तो।
1: बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा कॉल अटेंड किया, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: नाम बताइए अपना, कहाँ से बोल रही हैं?
1: नाम मैडम जी सरोण कुमार रणवा, गांव हीरावाली, जिला फाजिलका, पंजाब के।
0: कैसे हैं आप, बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं?
1: बहुत बढ़िया मैडम जी, मालिक की दया है, बाकी हम तो खेती बाड़ी का काम करते हैं, जमींदार आदमी है।
0: बिल्कुल अच्छी बात है। तो
1: हाँ जी,
0: तो अभी क्या पैदावार हो रही है खेतों में? मौसम इतना गर्म है, आपके पंजाब में भी तो गर्मी हो रही होगी।
1: बिल्कुल जी, गर्म दिन बहुत गर्मी है, बाकी धान का बहुत बोआ है, वो अब 20 दिन के बाद में पटकर दोबारा लगाएंगे।
0: क्यों, मतलब इसको हटा देंगे?
1: अभी वो जैसे संगना बीजा हुआ है, संगना थोड़ी दूर में,
0: हाँ।
1: उसको फिर उखाड़ कर फुट फुट की खेती पर लगाएंगे दोबारा।
0: अच्छा, दोबारा लगेगा, तो दोबारा लगाने की प्रक्रिया में थोड़ी मेहनत ज्यादा हो जाती है?
1: मेहनत तो है मैडम जी।
0: हाँ, और गर्मी के इस मौसम में क्या ख्याल रखना पड़ता है फिर?
1: मैडम जी हम तो बाजरी आटे है, ये राबड़ी हमारे बनाते हैं।
0: बाजरी के आटे की?
1: हाँ, बाजरी का, मोठ का।
0: अच्छा, मोठ का भी?
1: हाँ, उसमें छाछ डालकर सुबह पीते हैं, 10 बजे शाम को दलिया बनाकर रख देते हैं, वो सुबह ठंडा होता है, वो छाछ दही के साथ में खाते हैं। ये गर्मी का बहुत बढ़िया उपाय है खाने के लिए।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो रात को आप मोठ का दलिया बना देते हैं, उसको सुबह खाते हैं?

0: जैसा है, कभी कोई तल वगैरह हरी मिर्ची मिल जाती है, वो बहुत बढ़िया है।
1: बिल्कुल बहुत सही कहा, बहुत ही अच्छा जीवन बिता रहे हैं प्रकृति के बीच में और शुद्ध खाना खा रहे हैं अपने ही खेत का।
0: हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल।
1: चलिए तो बता दीजिए आपकी पसंद का कोई गीत।
0: मैडम जी रवार की फिल्म से सुना गया है मेरे साथ या गीत चू कोई लता

0: बताइए तुम है ये विवेक भारती से।
1: हेलो सरवाइस, नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: ग्राम कटारिया खेड़ी, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से वेद भारती स्थानीय में सोचता हूँ। मैं राम नरेश बोल रहा हूँ मैम।
0: स्वागत है आपका राम नरेश जी।
1: जी जी, और हम वेद भारती को बहुत पसंद करते हैं, जिससे आने वाले प्रोग्राम चाहे हेलो फरमाइश हो, सेलोलाइट के सितारे हो, आज की फनकार हो, या नया प्रोग्राम शुरू किया गया है मन चाहे गीत। हम वेद भारती से सन 2000 से जुड़े हुए हैं। जब सुबह 9:15 तक तो हंगामा प्रोग्राम आया करता था।
0: 26 साल हो गए आपको इस कार्यक्रम के सभा से जुड़े वेद भारती से।
1: जी, वेद भारती से जुड़े हुए और कई दौर देखे हैं, देखा जाए तो 2 दशक से अधिक समय हो गया है।
0: कैसा लगता है आपको इतनी समय से विविध भारती सुन रहे हैं? अपने जीवन में कोई परिवर्तन होता लगा आपको?
1: विविध भारती सुनने से हमें जानकारियाँ मिली और ज्ञानवर्धक बातें मिली, किस तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए अपने से बड़े।

0: के साथ में जीवन जीने का तरीका नजरिया सब कुछ सिखाया और शुक्रिया विनोद भारती जो आपके सहारे हम 26 वर्षों तक अभी लगातार प्रोग्राम सुन रहे हैं और विनोद भारती से सुन सुन कर सीखा। ये जो सिंगर गा रहा है ये मोहम्मद रफी है, ये जो सिंगर गा रहा है ये किशोर कुमार है, अब जो सिंगर गा रहा है वो कुमार सानू है। ये आवाज उदित नारायण की है क्योंकि सिंगरों की आवाज पहचानना हमने विनोद भारती के कार्यक्रमों में गीतों के माध्यम से सुन सुन कर ही सीखा। चाहे वो सिंगर का नाम नहीं ले क्योंकि हम पहचान लेते हैं फला फला सिंगर गा रहे हैं। कहते हैं सिंगर की आवाज है तो हम करेक्ट कहते हैं, बिल्कुल हमने सही पहचाना।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत कुछ सीखा आपने। जी तो चलिए अपनी पसंद का गीत बताइए।
0: कल का नाम है हम आपके हैं कौन और गाने के बोले

0: आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार
1: जी मैडम, मैं रघुवीर से राजपूत बोल रहा हूँ, महाराणा प्रताप चौक छिपावड़ तहसील खिड़किया जिला हरदा मध्य प्रदेश से।
0: रघुवीर जी बोल रहे हैं, कैसे हैं रघुवीर जी?
1: जी मैडम हम अच्छे हैं, आप लोग कैसे?
0: हम भी अच्छे हैं, आप बताइए क्या करते हैं?
1: मैडम हमारे खेती किसाने का काम है और होटल वगैरह है।
0: अभी क्या चल रहा है आपके खेत में?
1: मैडम अभी गेहूँ के बाद तो खाली रहता, खेत कुछ नहीं लगाते, पानी के लिए

0: सफर कार्यक्रम हवा महल आदि मतलब सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं मैडम।
1: सुरीला सफर में आप अपनी बात लिखती हैं हमारे फेसबुक पेज पर।
0: मैडम मैं अभी 2019 के बाद मैंने रेडियो सुनना बंद कर दिया था।
1: क्यों?
0: दोबारा चालू किया है कोरोना काल से मैंने बंद कर दिया था।
1: तो इतना लंबा समय क्यों लिया बंद करने के बाद शुरू करने में?
0: कार्यक्रम बंद हो गए थे भारती से तो धीरे धीरे मैंने भी सुनना बंद कर दिया था मैडम।
1: चलिए लगातार सुनिए और अपनी राय देते रहिए और फेसबुक पेज से जुड़िए अपने विचार व्यक्त कीजिए ताकि आपकी टिप्पणियों को हम स्थान दें पढ़ें।
0: जी जी मैडम।
1: हमारे श्रोताओं से हमारे कार्यक्रम है बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत। क्या बात है गर्मी के इस मौसम में बड़ा सुंदर गीत सुनना चाहते हैं।
0: गाना है और शंकर जयकिशन का

मैम मेरा

0: चार दिन से बारिश हो रही है मैम।
1: अरे बारिश आ गई है
0: जी मैम।
1: तो कुछ ठंडा हुआ मौसम?
0: जी मौसम अच्छा है, सुहाना है मौसम।
1: अच्छा फिर बारिश आने से क्या फायदा हुआ वहाँ?
0: जी पहले तो बहुत धूप था, आप राहत मिली है गर्मी की।
1: कोई गर्मी से राहत मिली है ना?
0: जी मैम।
1: क्या काम करते हैं आप टिंकू जी?
0: जी मैं तो फिलहाल घर का काम काज करता हूँ, और अभी तक तो फिर से करना पड़ेगा आगे से।
1: अरे क्यों नहीं करते अभी से? क्या उम्र है आपकी?
0: जी फिलहाल तो मेरा 19 साल की उम्र है।
1: अच्छा पढ़ाई की है आपने?
0: जी मैम मैंने तो ऑनली टेन कम्प्लीट किया है। मेरा एक उद्देश्य भी है, मैं सीआरपीएफ कमांडो में जाना चाहता हूँ। फिलहाल यही तैयारी चल रहा है।
1: क्या तैयारी कर रहे हैं? फिजिकल फिटनेस का ध्यान रख रहे हैं आपने?
0: जी मैम अच्छे से रख रहे हैं मैम।
1: बिल्कुल खाना पीना और सब कुछ आपको सही तरीके से करना पड़ेगा।
0: जी मैम
1: तभी तो कमांडो बन पाओगे, है ना? कितना मुश्किल होता है फिजिकल फिटनेस, मेंटली इतना मजबूत बनना पड़ता है।
0: जी मैम
1: बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप युवा हैं और कार्यक्रम सुनते हैं, कौन से गाना सुनवाए आपको टिंकू जी?
0: जी मैम मुझे पहली पहली

0: हाँ हम ठीक हैं। कश्मीर के मौसम बताइए।
1: कश्मीर के मौसम अभी सुहाना है, मौसम ठीक है। अभी ठंडे ठंडे मौसम है यहाँ पे, सुबह शाम ठंडे, दिन में गर्मी रहता है।
0: काफी टूरिस्ट आ रहे होंगे घूमने इन दिनों।
1: हाँ, पर्यटक तो बहुत सारे आते हैं यहाँ सोनामर्ग में। आपको लगभग 15,000 पर्यटक आते हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा एक बात बताइए मोहम्मद रैना साहब, बकरीद पर आप क्या कहेंगे? अब तो बकरीद का जो असली मकसद है, असली संदेश क्या है, क्या सोचते हैं आप? जो हजरत साहब उनकी परंपरा, उनकी कुर्बानी की परंपरा हमें क्या सिखाती है?
1: हमें सिखाता है वो ईमानदारी, ईमानदारी हर चीज में। जो भी ईमानदारी करेगा वो आगे बढ़ेगा।
0: अच्छा एक बात बताइए, जो बकरीद का त्यौहार हमें समाज में जरूरतमंदों की मदद और दान करना, सहायता करना सिखाता है?
1: ये तो गरीबों को बढ़ना है, हर किसी को भी बांटना है। ये
0: आपकी प्रेम और भाईचारे का बनाए रखने का एक बहुत बड़ा त्यौहार है ये।
1: हाँ हाँ, ये तो बड़े त्यौहार है।
0: आप ऐसा सोचते हैं कि सभी समुदायों के बीच आपकी प्रेम और भाईचारा बना रहे?
1: हाँ सही बात, हिंदू मुस्लिम तो एक ही भाई भाई है।
0: चलिए तो इस त्यौहार को अच्छे से मनाइएगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: हमें सुनने गाना पत्थर की फूल, लता मंगेशकर की आवाज में, कभी तो छिल्ला।

कभी कोई अजनबी अपना सा लगने लगता है, दिल की धड़कन झड़क, फिर एक दिन वो खामोशी से दूर चला जाता है, बहुत दूर। कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं,

को समझाते हैं, सोचते हैं कहां कैसे हमने उसे खो दिया, क्यों खुद को कोसने लगते हैं, अपनी भावनाएं, अपने जज्बात

बिना बजे खूबसूरत रिश्ते में दूरी बनाता है तो उसे जाने दो। किसी ऐसे शख्स को चुनना जिसे आपको कभी चुना नहीं, उसे उसकी खाई पर छोड़ दो।

से अक्सर हम सच्ची को साफ साफ देख नहीं पाते और जीवन तो

के नहीं संयोगों से जन्म लेती है। न उन्हें गढ़ा जाता है न रचा जाता है, ये उपन्यास के आखिरी पन्ने पर आखिर आखिर दम तोड़ देती है

छोटी सी परकोटे के भीतर हुआ। हम समझ पाते कि किसी रिश्ते को

कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत गाने के साथ। इसे गाए हैं अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों ने।

0: किरण बोली, हंसी की खनक जादू की महक बातों में भूलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम चलाएंगे स्मृतियों के बीच
2: बैठा

0: que de verdad, yo lloro. Dice que si se me dio, desmetiéndote.
1: ये सब भारती और कार्यक्रम चल रहा है तराने नए पुराने। आइए सुनते हैं नसीब फिल्म का ये गाना।

है कार्यक्रम महफिल, तुम्हें बहुत स्वागत है आपके श्रोताओं का इस कार्यक्रम में। मैं हूँ आपके साथ सीमा, नमस्कार। श्रोताओं, आप सभी को ईद उल अजहा की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंकज उदास की आवाज में

0: जब सपनों को मिलती है, शिक्षा की रोशनी, जब मेहनत को मिलता है विश्वास और जब तकलीफ बढ़ती है भविष्य की पहचान,
1: तब जन्म लेती है सफलता की नई उड़ान।

जब कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो उसमें चुनौतियाँ आती हैं, उसमें चैलेंजेस आते हैं। इसी तरह से जब हम लोग कभी पॉलिटेक्निक को इस दिशा में ले गए, सर कभी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी बनाना चाहते थे, किसी चीज़ को शुरू करना तो आसान होता है लेकिन उसे सस्टेन करने में ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। वी वर हैविंग डिप्लोमा कोर्सेज इन सिक्स डिसिप्लिन, मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि वाइल वी आर वर्किंग टुवर्ड्स अवर करियर यूनिवर्सिटी वी विल बी स्टार्टिंग एडिशनल कोर्सेज। तो उसमें आप देखिएगा, दो साल पहले हमने बीसीए बीबीए के कोर्स को शुरू किया, उसके बाद हमने बीटेक के लिए अप्लाई किया। सो वी आर ग्रेटफुल टू जेओटी, वी आर ग्रेटफुल टू आईसीटी एंड द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड एज वेल एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट दे फाउंड अस कैपेबल एंड इक्विप्ड इनफ टू अलाउ अस टू स्टार्ट दिस

के नेतृत्व प्रबंधन और नए सोच का सपना देखते हैं। इसी सोच के साथ संस्थान ने BBA और BCA जैसे आधुनिक कोर्स शुरू किए। ये बात करते हैं BBA विभाग की प्रभारी देखिए, अभी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिक्रूटमेंट हो गई है वो कुछ कॉमन स्किल्स देखना चाहती है, जैसे कि लीडरशिप क्वालिटी देखना चाहती है, कॉन्फिडेंट पर्सन देखना चाहती है, कम्युनिकेशन में

every time.

0: चौथा भी है, राइटिंग सब है, तो ये सारे एक्टिविटीज के दौरान वो सीखते हैं कि किसी को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, कैसे लीड लिया जाए, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए।
1: सिर्फ डिग्री नहीं, यहाँ तैयार होते हैं भविष्य के लिए।
0: आज दुनिया डिजिटल हो रही है और भविष्य की डिजिटल बनती है। किसी दिशा में संस्थान में बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की शुरुआत की है। आइए सुनते हैं डॉक्टर चंद्रा भंसी को।
2: तो उपयोगी और संभावनाओं से भरा क्षेत्र है। हम ऐसे दौर में हैं जहां लगभग हर क्षेत्र तकनीक पर आधारित होता जा रहा है, इसलिए बीएससी केवल एक डिग्री नहीं है बल्कि भविष्य की अनेक संभावनाओं का द्वार खोल देता है। जैसे मैं बता सकती हूँ आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बढ़ता उपयोग आप देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट की बढ़ती हुई मांग आप देख सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी की उतनी आवश्यकता बढ़ती जा रही है, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा साइंस में काफी अवसर है, और ऑटोमेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के कारण उद्योगों में टेक्नोलॉजी की बढ़ती भूमिका भी है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस की उपयोगिता फ्यूचर में भविष्य में बहुत रहेगी। हम केवल पारंपरिक कक्षा शिक्षण तक सीमित नहीं है बल्कि विद्यार्थियों को इंडस्ट्री ओरिएंटेड लर्निंग और प्रैक्टिकल एक्सपोजर प्रदान करने का विशेष ध्यान देते हैं। इसके लिए आधुनिक लैब है, प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण है, सेमिनार वर्कशॉप तकनीकी प्रतियोगिताएं तथा इंडस्ट्री इंडक्शन आयोजित किए जाते हैं हमारे संस्थान में।
1: यहाँ तकनीक केवल बल्कि भविष्य की नई सभी संस्थान में विद्यार्थियों को इंडस्ट्री के अनुरूप तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
0: राव को तो ये जरूरी है कि वो अपना कोई भी जो क्षेत्र है उसमें महारत हासिल कर ले। उस अगले पायदान पर जाने के लिए आवश्यकता होती है कि हम जिस क्षेत्र में जा रहे हैं उसका हमें पूरी जानकारी हो और उसके तकनीक में भी हमें महारत हो। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारी जो लैब पीरियड्स होते हैं उसमें हम इक्विपमेंट जो है उसके बच्चों को वेल वर्क कराएं, उनको अच्छे से समझाएं। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही अच्छा है, तो इन सभी के बहुत अच्छे लैब हमारे संस्थान में उपलब्ध है और हमारे संस्थान के जो विषय हैं उन विषयों में भी लैब जो है वो एकदम सम्मिलित किया गया है। बच्चे को बच्चों को जैसे हमारे यहाँ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल यहाँ पर है और हमारी कोशिश रहती है कि हमारे यहाँ जो कंपनी आती है उसका फीडबैक लेते हैं, हमारे बच्चों में किस तरीके से प्रतियोगिता परीक्षा हो या फिर इंटरव्यू को सामना करने के लिए उसमें हिस्सा लेने के लिए क्या क्या मूलभूत आवश्यकताएं।

4 kids.

Perfetto. Dio, wow, come siamo attenti a questi dei

ये देख के पति लगाओ और

अब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे भारत से लेकर

समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए। 9 बजकर 30 मिनट का समय होगा। कार्यक्रम

करने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनिए प्रादेशिक।

metal coating that tends to shatter the screw with the pliers. लेकिन ये आईएसएमआर की एक प्लास्टिक की वस्तु और विशेष रूप से भी इसमें कुछ अंक योगदान रहा इसके साथ साथ प्रैक्टिकल जानकारी स्कूल में जाकर कि मैंने उनको ये भी और तरह से आदर्श

0: ধরলেন, জাদু কি মহেশ বাদুকে গলে গিয়ে আত্মীয়তা কে রোল दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगे अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर। जिस के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग, हिमानी जी साझा करेंगे अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा

बात कार्यक्रम जयमाला में आपका फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं मोहरा फिल्म का गाना। पंकज उदास और साधना सरगम की आवाजों में, गीत लिखा इंदिवर ने, संगीत ब्रजेश शाह का है।

0: कार्यकर्ता हर्षवर्धन गर्ग कार्यक्रम में आज हमारे साथ है अभिनेत्री प्रकृति नौटियाल। प्रकृति बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में।
1: थैंक यू।
0: ये बताइए कहाँ की रहने वाली है, परवरिश कहाँ पर हुई है?
1: मैं वैसे गढ़वाल की हूँ उत्तराखंड, और जन्म मेरा दिल्ली में हुआ था, लेकिन मैं बहुत जगह रही हूँ, जैसे गुजरात भी रही हूँ, चंडीगढ़ भी रही हूँ, दिल्ली भी रही हूँ, बॉम्बे भी, उत्तराखंड, बहुत जगह रही हूँ।
0: लगाव है गढ़वाल की वादियों से
1: बहुत ही ज्यादा, पहाड़ को भी भूल नहीं सकता, ऐसा लगता है कि पहाड़ में ही वापस बस जाए, लेकिन इंडस्ट्री यहाँ पे ऐसे तो बॉम्बे में रहना पड़ रहा है।
0: ये बताइए ये जो अभिनय की यात्रा है, अभिनय का शौक है, ये कहाँ से शुरू हुआ था आपका?
1: मुझे ऐसा लगता था कि बच्चे बहुत नौटंकी होते हैं, तो मैं शीशे में देख के अपने
0: ये
1: पता नहीं काफी बचपन से शुरू हो गया था। तो एक मुझे ऑफर आया दीदी राशि का है, उसमें एक डॉक्यूमेंट्री था, गुजराती डॉक्यूमेंट्री, तो मम्मी ने बोला कर लो ट्राई अगर तुम्हें करना है तो ट्राई कर लिया। उसके बाद से फिर शॉर्ट फिल्म वगैरह सब शुरू हो गए थे, म्यूजिक वीडियो।
0: पहली जो एक्टिंग थी वो की आपने 15 वर्ष की उम्र में एक डॉक्यूमेंट्री के लिए, कैमरे का सामना किया, तब क्या हो रहा था?
1: तब दिल की धड़कने बड़ी हुई थी, अभी भी है।
0: जब परफॉर्म करना होता है या किसी अनजान एक्सपीरियंस से गुजरना होता है तो दिल स्कूल के जमाने से भी चल रही थी एक्टिंग, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्री की पहले से भी?
1: हाँ, मतलब थिएटर होता था हमारे स्कूल में, प्लेज होते थे,

0: 3 साल वहां से और 2 साल मैंने दिल्ली में किया।
1: अच्छा, तो जब थिएटर में शुरुआत हुई चंडीगढ़ में रंगमंच की अच्छी परंपरा है, वहाँ स्कूल भी है, वहाँ की यूनिवर्सिटी है। मुझे वहाँ के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, कौन से नाटक किए, किन लोगों के साथ किए थे?
0: मेरा सबसे पहला नाटक रामलीला था, तो उसमें मुझे कुछ पता ही नहीं था ये राम लक्ष्मण के बारे में, मैंने कुछ सुना ही नहीं। और मैंने सोचा रामलीला मतलब आज के जमाने में कौन रामलीला करता है, और वो 8-9 दिन चला और हमारा जो सेक्टर का ग्रुप था वो फर्स्ट आता था हमेशा की तरह, इस बार भी आया ही था। तो मेरा सभी के बचपन का रोल था।

0: अच्छी रही, फिल्म का नाम है, और ज्यादा बड़ा कैरेक्टर नहीं था, छोटा ही था, लेकिन मजा आया। मुझे पंजाबी बोलनी आती नहीं थी, इस तरीके से मैंने पंजाबी भी सीखी।
1: ओ, तो पंजाबी बोलनी

0: इन दौरे में मतलब पहली बार तो आप लोगों के लिए सबू क्या किया था?
1: मैंने इसलिए मैंने किए वो भी उसमें भी कुछ टर्म का मेरा रोल है और मोबाइल फोन का इसका इसे बहुत किया है।
0: टेलीविजन के लिए और फिल्मों के लिए काम करने में किस तरह का फर्क है एक एक्टर के लिए?
1: टेलीविजन में होता है कि आपका कैरेक्टर मिला है तो वही आपका चलता रहेगा, वो ही आप करते रहते, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी बोरियत ऐसे हो जाता है वही करते हुए। फिल्म में क्या होता है कि आपको बहुत वेराइटीज है कि एक महीने बाद अब आपको दूसरा काम मिल रहा है तो एकदम से दूसरा रोल मिल

0: सकती है। तो मुझे तब हिम्मत आई कि हाँ
1: बिल्कुल। अभी मुझे बताइए कि वो कौन कौन से सीरियल है जिन्होंने थोड़ा आपको नाम दिया, आपको पहचान दी है?
0: एक तो ये मैंने किया था स्वाभिमान किया मैंने, और मैंने जो रियलिटी शो किए तो बिंदास का भी किया था और कुछ एक दो और भी हैं, तो उनसे मुझे काफ़ी वो हुआ। और एक ऐड था मैंने किया था फोन का, तो उससे भी मुझे काफ़ी हुआ।

0: कि इसमें खर्चा कैसे चलाएगी। तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है गन कि कहाँ जा रही है रात को, क्या हो रहा है, लेकिन अब ऑफ स्क्रीन किसी को मेहनत दिखती नहीं है।
1: यही मैं कह रहा हूँ कि किस तरह की मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ता है।
0: वही सबके सामने आप कितने भी मेंटली डिस्टर्ब हो, सबके सामने आपको नॉर्मल दिखाना है कि आप नॉर्मल हो, आप खुश हो, आपको बहुत काम मिल रहा है। अगर किसी को नहीं मिल रहा, हम दिखा नहीं सकते लोगों को,

0: रखा हुआ है और खुशी का माहौल है, मैं रो रही हूँ, मैं लिटरली आंसू हो रही हूँ, वो खुशी का माहौल है और मैं रोते रोते मेरा पैर और वो प्लेट गई और वापस फिट पे वो आ गई और मैं बैठे बैठे रो भी और हंस भी रही हूँ। बहुत फनी भी लगा था और थोड़ा डिप्रेसिंग भी था, मतलब अजीब सही था, ये सबसे यादगार था एक्चुअली।
1: बताइए कि सीनियर्स का बर्ताव नए एक्टर्स को लेकर किस तरह का होता है?
0: अच्छा होता है, मेरे कैरेक्टर अच्छा है तो सीनियर्स बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, सिखाते हैं बल्कि। जिनके साथ मैंने काम किया, मैं पहले डरी हुई थी, थोड़े बहुत बड़े बड़े एक्टर्स थे मेरे सामने और मैं थोड़ा सा घबरा गई थी, तो

0: करनी है, आर्ट फिल्म करनी है।
1: आज के जमाने में
0: तो बहुत है, अगर आप एक बार चल पड़े, आपकी गाड़ी चल पड़ी तो वो चल पड़ी, पर लेकिन वो चलाने के लिए गाड़ी आपको इतनी मेहनत करनी है, आपका रोज एक आपको एग्जाम लड़नी है, हजारों एक्टर में से आप सिलेक्ट होने चाहिए, क्योंकि लाखों एक्टर आपके बराबर आपको तो मतलब ये रोज एग्जाम है
1: और
0: रोज बहुत टफ है।
1: ऑस्ट्रेलियन फिल्म आपने की आपने बताया कि बहुत ज्यादा उसके बारे में आप रिव्यू नहीं कर सके, मुझे बताइए कि फॉरेन क्रू के साथ काम करना कितना डिफरेंट था भारत के लोगों की बजाय?
0: मुझे ऐसा लगा कि वो ज्यादा बेटर है वो बहुत प्रोफेशनल है अपनी चीज को लेकर, अगर उन्हें वो चीज करनी है तो वो बहुत प्रोफेशनली करेंगे, यहाँ पे थोड़ा खिचड़ भी बेटर है उनको भी वो ग्रीट करें। मैंने थोड़ा बॉलीवुड में देखा है कि जूनियर एक्टर्स को या जूनियर आर्टिस्ट जो भी होता है बैकग्राउंड में वो लोग ऐसे ग्रीट करते हैं जैसे कौन है वो पता नहीं कहाँ से वो उठाते आ गए, जबकि वो भी फिल्म का हिस्सा है, अगर वो नहीं होता तो इस फिल्म नहीं बनती है, मतलब वो बहुत मायने रखते हैं, पर वो बॉलीवुड वाले उनकी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बॉलीवुड वाले मैंने नहीं देखे रिस्पेक्ट करते हैं।
1: और टेलीविजन की दुनिया में?
0: टेलीविजन में भी सबकी इज्जत है।
1: अच्छा, मुझे ये बताइए कि बहुत सारे लोग हैं जो छोटे छोटे शहरों से स्टडी करने के लिए मुंबई आने को तैयार रहते हैं, और हम जब विभिन्न भारतीय एक्टर्स या अलग अलग पर्सनैलिटीज के इंटरव्यू सुनवाते हैं तो लोगों को लगता है कि अगर ये लोग मुंबई में कामयाब हुए हैं तो हम भी चांस ले सकते हैं, ऐसे लोगों को अपने एक्सपीरियंस से आप क्या सलाह देंगे?
0: अगर आप एक साल थिएटर कर लिए आपने तो आप जरूर बॉम्बे में सवाल करिए।

0: क्योंकि बहुत एक्टर फिल्म एक्टर भी जो अभी यहाँ पे थिएटर कर रहे हैं, तो आपको पहले यहाँ पे प्रोडक्शन में मिलेगा। और मैंने सोचा था कि यहाँ पे थिएटर आके करूँगी, लेकिन थिएटर में पैसा नहीं है, थिएटर में काम अच्छा है, तो फिर मैंने थिएटर का आइडिया ड्रॉप कर दिया।
1: आप ये मानते हैं कि एक्टिंग जो है वो एक नेचुरल प्रतिभा है या फिर उसको ट्रेनिंग के जरिए सवारा निकाला जा सकता है, बेटर बनाया जा सकता है?
0: नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग बहुत अच्छा एक्टर हैं, हम सब लोग रोज अपनी लाइफ में एक्टिंग करते हैं रियल लाइफ, लेकिन जब कैमरा आता है तो कॉन्शियस हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि वो सामने वाला हमें देख रहा है। लेकिन अगर हमें पता ही ना चले कि कोई हमें देख रहा है, तो हम लोग बहुत अच्छे से एक्टिंग कर लेते हैं। तो वी ऑल आर बॉर्न एक्टर, लेकिन उसे ट्रेनिंग थ्रू हम लोग और अच्छा करते हैं। जैसे एक पेंटर होता है, अगर वो रोज पेंटिंग करे तो वो और अच्छी पेंटिंग बनाता है। तो ऐसे ही एक्टर है, अगर वो रोज एक्टिंग करे तो वो और बेहतर हो सकता है ट्रेनिंग।
1: आज की एक्टिंग की दुनिया में मायने है वो आपको बेटर बना सकती है। अब मुझे ये बताइए कि आज टेलीविजन या फिल्मों में जो रोल आपको मिलते हैं अपने स्टेज पर, तो वो रोल किस तरह से आप चुनते हैं? आपके मन में एक उम्मीद होती है कि मुझे इस तरह के रोल करने हैं? आपने तय कर रखा है कि इस तरह के रोल करना चाहती हूँ, लेकिन आज उस तरह के सब्जेक्ट नहीं आ रहे हैं?
0: मैं बहुत ऑनेस्टली बताना चाहूंगी, अभी इस टाइम मुझे जो आ रहा है मैं कर रही हूँ, बिकॉज मुझे भी अभी सर्वाइव करना है बॉम्बे में। मेरे पास कोई से खजाना नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, तो हमें भी अभी बहुत पैसे चाहिए मेंटेनेंस के लिए। वैसे भी इस इंडस्ट्री में बहुत पैसा चाहिए, अपने ऊपर ही बहुत खर्चा होता है।

0: खुशियत में पा लिया। हम लोग ऐसे ही मिलते रहे लेकिन डैडी से कभी भी मुलाकात न हो सके। फिर मीना ने शादी का जैसे भी छोड़ दिया। मुझे भी लगा मैं तो उसके लिए कोई खास कोशिश नहीं कर गया। बहुत जैसे मिले थे वैसे ही अचानक मिलना जुलना पड़ गया। वैसे कविता का ख्याल है हम दोनों को करीब लाने के लिए मीना ने सेक्रीफाइस की है, लेकिन अपनी उतरन किसी को दे देना दान तो हो सकता है। तो तुम्हें इस आदमी के साथ मीना को देखकर हैरानी क्यों? इसलिए भाई की दौलत की जिसको कमी न हो, खूबसूरती से प्यार करने वाली औरत आखिर इस किस्म के आदमी से शादी कर सकती है? क्या पता उसके लंबे चौड़े अरेंजमेंट में यह आदमी नए से ढाल हो और वो लोग उधर जा रहे
1: हैं।
0: हेलो
1: मीना,

0: कभी वो तुमको बेहद चाहते भी तो थे, तुम तो उसे पसंद नहीं करते।
1: ना करता होता तो इतना सभी क्यों?
0: जिसके पास पैसा है तुम उससे भागना नहीं चाहते।
1: मेरी कुछ समझ नहीं आता कि क्या
0: करूं। तुम वक्त की रफ्तार के साथ नहीं हो, जिसमें वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, वो तुम्हारे साथ नहीं दौड़ेगा, तुम्हें उसके साथ भागना होगा।
2: कोई कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया तो फिर बाहर आ जाना, सारा प्रोग्रेस ही का पड़ रहा है।
1: नहीं नहीं कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है, आओ नीना बाहर से।
2: चलो अरे भाई, मैं तो तुम्हारी ही वकालत कर रही थी दीदी। लेकिन किसी को हमारी परवाह हो तभी तो।
1: दीदी तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती?
2: क्या समझूं, समझने को रखा ही क्या है, खुद ही ऐसी गलती कर रही हूँ, खुद ही से भुगतन ले रही हूँ। क्या बात है दीदी? कुछ नहीं, कुछ भी
1: नहीं। क्या आखिर हुआ क्या है? तुम ये तो बताओ तुम चाहती क्या हो?
2: बताओ मुझे खुद क्या चाहती है, तुमसे क्या छुपा है? अब तो सारा जमाना जान चुका है कि मैं क्या चाहती हूँ, कुछ चाहती हूँ।
1: ओ, तुम्हें तो वहम हो गया है दीदी।
2: हाँ हाँ मुझे भी वहम हो गया है। अब तुम क्यों नहीं देरी से बात करते हो? मम्मी बार बार मुझसे पूछती हूँ किसी ने प्रपोज किया, किसी कब प्रपोज करेगा, किसी के सारे कब तक बैठी रहूँगी,

0: चांद बुझ कर देख के आई ताकि चांद से बात कर।
1: ओ चलो आज की बात छोड़ो दीदी, मैं जल्दी ही किसी रोज।
0: मैं जानती हूँ लेकिन कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा।
1: आएगा दीदी, आएगा।
0: आज
1: बात ये है, वक्त नहीं रहा। देखो 7:30 बज रहे हैं और 8 बजे तक मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है।

0: है तो भी रोशनी कर दो।
1: आप क्या और रुकने का इरादा है या चलना है?
0: अरे भाई मुझे तो जाना है, 8 बजे एयरपोर्ट पहुँचता।
1: तो फिर चलो ना, 7:30 तो कभी के बज चुके हैं। आओ
2: हैंडसम, हमसे तो आज बात ही नहीं की।
0: कभी इतना बोर करूंगा मैडम की कान पकड़ लो।
2: वो हमसे पूछते हैं उनका दर्द भी कहाँ।
0: मजाक छोड़ो, मुझे जाना है भाई।
2: ये सर वो भी मीना को सी ऑफ करने के लिए।
0: चलो चलो,
2: तुम भी जा रहे हो हार्दिक?
0: तुम कहो तो रुक जाओ।
2: कहाँ?
1: गुड नाइट गुड नाइट, आपकी फ्लाइट अभी लेट है। अच्छी बात है, तुम्हारी जगह।
2: गुड नाइट है,
1: गुड नाइट जाएगा।
2: जा रहे हो निकी?
0: अरे भाई इतनी जल्दी? मजबूरी है अंकल, मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर आ रहे हैं बॉम्बे से, 8 बजे फ्लाइट आनी है, एयरपोर्ट उनको रिसीव करने के लिए पहुँचना है, तो जरूर जाओ। अच्छा
2: थैंक्स फॉर कमिंग।

0: सुनाइए चले पहले होटल ही चले
1: अब
0: पहले मैं कुमार के यहाँ डिनर के लिए जाना चाहूंगा वहां पार्टी से बातचीत करके ही होटल जाऊंगा होटल को टेलीफोन वहीं से कर देंगे
1: आप राइट सर
0: तुम्हारी सेल्स की प्रोग्रेस अच्छी चल रही है लेकिन मैं समझता हूँ कि तुम थोड़ी सी मेहनत और करो तो हम सेल्स को और बढ़ा सकते हैं
1: यस सर
0: मैं कोशिश करूँगा आई डोंट बिलीव इन कोशिश विक्रम ये हो नहीं चाहिए मैं कल सुबह तुम्हें इसका तरीका बताऊंगा विक्रम तुम्हारा ऑफिस अभी भी कई मामले में बहुत ढीला है उसे टाइट करो विक्रम टाइट करो
1: यस सर
0: मुझे सिर्फ परेशानी बिल्कुल पसंद नहीं विक्रम हमने एक बार एक पूरा डिपार्टमेंट खोला था जिसका काम सिर्फ यही था कि हिसाब लगाए और देखे कि किस काम में

तो रुकेंगे गए तो इस सामने ट्रैफिक लाइट में स्टॉप सिग्नल है। देखा, यह भी वक्त के गलत इस्तेमाल की बात है। अगर इंसान सही वक्त पर स्टार्ट करे तो तमाम

Thank you.

Wir haben die Möglichkeit, die Menge zu verändern.

कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का कार्यक्रम आपकी प्रीति शर्मा के साथ, तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है फिल्म केदारनाथ से, इसे गाया है अरिजीत सिंह ने, गीत अमिताभ भट्टाचार्य का, संगीत अमित त्रिवेदी का।

0: पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद केस सीधा उन्होंने पहना नहीं, एकदम लगती। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे
0: सीमा न भूले। उजाले उनकी यादों के

0: के बाद कार्यक्रम के श्लोक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजी हुई खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगे अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।

के संग। शिवानी जी साझा करेंगे अपने दिल की बात। तो जरूर सुनिएगा दो दिन विशेष

की सरकार के घर प्रतिबद्धता बनाई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।

0: முகத்து வழிதான் சமர்ப்பணம். அமுய யோகம் கரஸ்தானியா कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
1: दो बार मुख्यमंत्री और सिद्धा विपक्ष के स्थान पर काम करते थे।

भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य के स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक चौहान ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन कल कर्नाटक गोवा केरल के तीन दिन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधाकृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेलसागंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे
1: के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग है, उनको मिला के 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर है या संयुक्त स्वामित्व में है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं के समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद विचार विमर्श आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिरला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिरला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsandair.gov.in और हमारे

0: और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
1: जो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत से लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण पश्चिम भारत के क्षेत्रों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूर्वी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीटवेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
0: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना लिए। पुरुषों के 45 किलोग्राम रिको वर्ग में आज छत्तीसगढ़ शिरोन ने जॉर्डन के सनी अहमद ओबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निम्हान ने स्टोक मीटिंग को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। इसी मीटर श्री मोदी ने कहा कि पुरुष पुरुष और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में 3 खिताब जीते हैं। मुख्य समाचार एक बार फिर, गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बंद का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या

0: pura de निकली हिमानी शिवपुरी
1: नमस्कार मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष अतिथि। 2 जून सिटी सहेली की वर्षगांठ पर

डॉक्टर और एस सी बालासुब्रमण्यम की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा गीत श्री लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का है। फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए।

0: के कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं। एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे।
1: तो सुना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: छोटे छोटे बच्चों के साथ धूम मिट्टी में खेला करता था।
1: सभी शहर

करने की बात है। गुजरात में बड़ौदा के पास एक गांव में एक गरीब परिवार में एक लड़का रहता था। उस लड़के को फिल्मों का ऐसा शौक था कि बड़ौदा से निकलने वाली किसी ट्रेन में सवार हो जाता और आसपास के गांव या कस्बे में पहुंच जाता, लाइन से एक दो फिल्में देखता और लौटती ट्रेन से चुपचाप वापस आ जाता। किसी को कुछ पता नहीं चलता। घर वाले ये सोचते कि ये लड़का यहाँ वहाँ भटकता रहता है, जाने किन किन के साथ खेलता रहता है। ऐसे ही एक दिन वो ट्रेन में बैठा मुंबई की तरफ जाने के लिए, इरादा ये था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। पिताजी को पता चल गया। पिताजी ने जमकर कुटुंबत की और वापस ले आए। आज के फनकार कार्यक्रम में आज रोचक दास्तान महबूब खान।

सामान्य सा परिवार था, छोटा मोटा काम था, बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, जिंदगी खुशनुमा थी। जैसा कि हमने आपको बताया, महबूब खान की बचपन की जिंदगी में ट्रेनें चला करती थी और उन ट्रेनों पर सवार होकर वो आसपास जाते, फिल्में देखते और वापस लौट आते। जहन में बस ये चलता रहता कि किसी तरह से वो खुद को पर्दे पर देख पाए, शौक अभिनय करने का था। तो ये सिलसिला जारी रहा, पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी थी नहीं, इसलिए कायदे से पढ़ाई लिखाई हो न सकी और फिर हुआ यूं कि आसपास के शहरों में फिल्में देखना होता था। समय बीतता गया, हुआ यूं कि महबूब खान की दोस्ती एक रेलवे गार्ड से हो गई थी और उस रेलवे गार्ड ने उनको पूरी तरह से यकीन दिला दिया कि उनके भीतर फिल्मी यही 16 वर्ष की उम्र में महबूब खान मुंबई भाग आए और सिनेमा में अपना मुंबई आए, अपने बेटे को ढूंढा, उसका कान पकड़ा और उसको वापस बड़ौदा ले गए। वहाँ जबरदस्ती महबूब खान की शादी कर दी गई, ये सोचकर कि वो बस यहाँ बंद जाएंगे और सिनेमा के अपने जुनून को जहन से निकाल कर फेंक देंगे। बहुत जल्दी महबूब खान एक बेटे के पिता भी बन गए, लेकिन जिम्मेदारी नहीं आनी थी तो नहीं आई और

खान उस जमाने के बीटी स्टेशन के पास ज्योति स्टूडियो के बाहर खड़े रहते और इस इराक में रहते कि किसी तरह से स्टूडियो में घुसने का मौका मिल जाए, बाकी का काम वो निपट लेंगे और किसी तरह से अभिनेता तो बन ही जाएंगे। लेकिन ये हो नहीं रहा था। दिन पर दिन बीत रहे थे। महबूब खान रातें प्लेटफॉर्म पर सोते हुए गुजारते। वो नहीं हारते। हर सुबह ज्योति स्टूडियो के सामने खड़े हो जाते। एक दिन गार्ड सचमुच इम्प्रेस हो गया और उसने महबूब खान की मुलाकात करवाई आरवेकर ईरानी से, जो उन दिनों भारत की पहली बोलती फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ से महबूब खान की गाड़ी चल पड़ी क्योंकि आरवेकर ईरानी ने उन्हें बतौर एक्स्ट्रा काम दिया। सन 1927 की ये फिल्म थी अली बाबा और 40 चोर। इसके बाद वो क्राउड का हिस्सा बनते रहे, फिर जूनियर आर्टिस्ट बने, फिर सपोर्टिंग रोल्स मिलते रहे और फिर ऐसा मौका आया जब भारत की पहली लेकिन फिल्मों में पैसा लगाने वाले और सब के विशेषज्ञ ये मानते थे कि ऐसे लड़के पर दाम नहीं खेलना चाहिए अपने आप में एक बड़ा दाम है। महबूब खान को इस रोल से हटा दिया गया। वहीं उन्हें समझ में आ गया कि अभिनय में वो कुछ ज्यादा तीर नहीं मार पाएंगे, उन्हें जिंदगी में कुछ और करना चाहिए। यहाँ से एक नया जुनून शुरू हुआ अपनी एक स्क्रिप्ट लिखने और उसका निर्देशन करने का। उन्होंने आखिरकार अपनी एक स्क्रिप्ट पूरी की और अलग अलग स्टूडियो के हंसते और उन्हें दरवाजा दिखा देते। आखिरकार सन 1935 में एक प्रोड्यूसर को उनकी कहानी पसंद आई और तब आई महबूब खान की निर्देशित पहली फिल्म अलविदा। ये फिल्म सिसिल बी डिमेलो की जानी मानी फिल्म साइन ऑफ द क्रॉस से प्रेरित थी।

ऑडिशन का मौका दिया। सन 1936 में महबूबान ने डेक्कन क्वीन फिल्म बनाई। सन 1939 में आई एक ही रास्ता। सन 1940 में अली बाबा। सागर मूवी टोन के लिए उन्होंने सन 1940 में बनाई अपनी फिल्म और

कार्टून और नेशनल स्टूडियो की फिल्मों का निर्देशन करते रहे। सन 1940 में आई फिल्म औरत महबूब खान के करियर की एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म बनी जाती है। सन 1942 में महबूब खान ने बनाई फिल्म रोटी और उसके बाद फिल्म नजमा का निर्देशन किया। ये फिल्म साल 1943 में आई थी। इसके बाद उन्होंने तकदीर और हुमायूं जैसी फिल्में बनाई। सन 1946 महबूब खान के निर्देशन में आई फिल्म

पश्चात महबूब खान के करियर की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म आई अंदाज। कलाकार थे दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर फरीदुल ईरानी थे। 26 अगस्त 1949 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। ये फिल्म एक प्रेम त्रिकोण थी

हिंदुस्तान फिल्म और इसके कलाकार थे दिलीप कुमार, निमी, प्रेमनाथ और नाजिरा संगीत नौकर था। ये फिल्म 4 जुलाई 19

बतौर स्पॉट बॉय शुरू की हो और जिसकी सहिंद हो अनमोल ऊंचाइयों को छूने के सपने, उस कलाकार ने मुंबई फिल्म उद्योग को दिया हॉलीवुड स्टाइल का पहला फिल्म स्टूडियो महबूब स्टूडियोज। महबूब स्टूडियोज का आगाज सन 1952 में हुआ मुंबई के बांद्रा में स्थित

करोड़ को, यानी 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती अस्तित्व में आई थी और विविध भारती पर प्रसारण शुरू होने के कुल 23 दिन बाद रिलीज हुई थी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया। रिलीज डेट है 25 अक्टूबर 1957। भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक कायजयी फिल्म। कलाकार नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार। दिलचस्प बात ये फिल्म महबूब खान की ही 1940 में आई फिल्म औरत का रिमेक थी। इस फिल्म की पटकथा और संवाद एस अभिनेता वजाहत मिर्जा और महबूब खान ने मिलकर लिखे थे। संगीत नौशाद का था, गीत शकील बदायूनी के। मदर इंडिया भारत की एक बेमिसाल फेमिनिस्ट फिल्म। महबूब खान एक स्त्रीवादी फिल्मकार माने जाते हैं, एक ऐसे फिल्मकार जो महिलाओं के पक्ष में खड़े होते हैं। नायिकाओं की भूमिकाओं वाली ये फिल्में सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद की जाएंगी। मगर इंडिया को तो एकेडमी अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट भी किया गया था। ये अलग बात है कि ये फिल्म

दूर ही रहता है। खास कुछ बेबाबियों के निशान देखे कहीं कहीं हमने, चांदनों के शरारों का शफाक हुस्न उनका, कईयों की सादगी बांधों की करवटें लेती जुलते, लबों की मुस्कुराहट तो भला फिर ऐसी तस्वीर कहाँ।

मुश्किल है, ये दुनिया की रवायतें बहुत मुश्किल है। दिल का मामला है, हर कौम का बया होता है, वो जिगर का तीर है, मुश्किल से निकलेगा, जहाँ विकास निकलेगी अगर जिगर से निकलेगा।

खुदी नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ। विविध